FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

सलाउद्दीन अहमद खां से ये हमद अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए ये गुरुवाणी, स्वर भाई गुरमे सिंह रागी का।

0: सुखदेव दास की ये रचना अभी आपने सुनी पीयूष और कैलाश अनुजा के स्वर में। इसी कृष्ण भक्ति के साथ आस्था के स्वर कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर, ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: गांधी जी आज हमारे लिए एक ऐसा जीवन मूल्य हैं जिसकी उपायदेयता बहुत ज़रूरी है, परंतु हम लोग अपने जीवन में उतारने में असफल पा रहे हैं। हमने औद्योगिक संस्कृति को मान्यता देकर तथा धर्मनिरपेक्षता की घोषणा कर अपने को गौरवान्वित महसूस किया। प्रजातंत्र, समाजवाद, कल्याण राज, निरपेक्षता जैसे बीसियों पश्चिमी के उधारी सिक्के हमने अपनी गांठ बांध लिए, पर उनके प्रति हमारी आस्था की नींवें गहरी नहीं हैं। मनुष्य के स्थान पर मशीन को रखकर हम पश्चिम की तरह ही मानव मूल्यों को संकट में डाल रहे हैं। गांधी का दिखाया मार्ग एक ऐसे मध्यम मार्ग की सृष्टि करता है जो हिंसात्मक प्रणालियों को अस्वीकार करता है। वो तो मानवीय प्रेम, मैत्री, सहयोग और सेवा, तप, संयम और आत्मिक एवं चारित्रिक बल को महत्व देता है। जनरल ब्रेडले ने युद्ध व विनाश के तांडव से त्रस्त होकर कहा था कि अब हम शांति के बजाय युद्ध के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जीवन के बजाय हत्या के बारे में ज़्यादा जानते हैं। हमने एटम की गुप्त व गहनता तो समझ ली है, परंतु पर्वत से जो उपदेश और प्रवचन दिए गए या जो प्राप्त होते हैं उन्हें हमने अस्वीकार कर दिया। दो महायुद्धों से संतप्त बचे शस्त्रों से लैस मानवता के लिए यदि

0: कोई कल्याण का मार्ग है तो यही मध्यम मार्ग है। मनुष्य के आत्मिक तप और ऐश्वर्य के प्रति अदम्य आस्था लेकर चलने वाला क्षण क्षण प्रयोगी निरंतर आत्मनिरीक्षणशील तथा सतत विश्व पीड़ा में जीने वाला कर्मयोगी गांधी आज हमारे आत्मसंकोच का विषय होकर यदि कल के मानव की नियति हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गांधी दर्शन का रथ सत्य और अहिंसा के दो पहियों पर चलता है, परंतु इस रथ को खींचने वाला अश्वलोक हित है। दिव्यता तथा महामानवता की हमारी सार्थकता बने, यही उज्ज्वल भविष्य की कामना हो सकती है।
1: ये था आज का चिंतन।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
2: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा। आज का विषय रागी की उन्नत उत्पादन तकनीक। वाचक स्वर सीमा कराहे।
3: किसान भाई बहनों राम राम। किसान भाई बहनों, आज हम कृषि चर्चा में बात करांगा रागी उत्पादन की उन्नत तकनीक पर। भाई बहनों, रागी एक प्रकार को साबुत अनाज छे जिके फाइबर प्रोटीन पोटेशियम न कैल्शियम जरूरी पोषक तत्व नसी भरपूर रहे। एको पौधो लगभग 1 मीटर ऊंचो रहे। एका फल गोलाकार चपटा न झुर्रीदार रहे। रागी का बीज गोलाकार गहरा भूरा रंग का न चिकना रहे, जी की हृदय रोग न गठिया का जोखिम का कम करना में भी मदद करे। एका सेवन सी डायबिटीज का रोगी न का लेना बहुत लाभप्रद रहे। एक उपयोग सी वजन कम करना में भी सहायक रहे। रागी कोलेस्ट्रॉल का कम करना में भी सहायक रहे। भाई बहनों, इन्हीं फसल का लेना भूमि की तैयारी इना प्रकार से करा, ई हर प्रकार की भूमि में पैदा करी जाई सकज। जिन्हीं भूमि में कोई धान्य फसल उगाना संभव नहीं है, वहां भी सफलतापूर्वक उगाई जाई सकज। ई फसल ना उतार चढ़ाव वाली, कम जल धारण क्षमता वाली, उथली सतह वाली हल्की भूमि में जेमा पानी को निकास अच्छो हो, एक ही खेती का लेना उपयुक्त रहे। भाई बहनों, एक लेना बीज को चुनाव न बीज की मात्रा इना प्रकार से रखा। भूमि की किस्म के अनुसार उन्नत किस्म का बीज न को चुनाव करा। हल्की रेतीली पथरीली कम उपजाऊ भूमि में जल्दी पकड़ वाले जाति न को, मध्यम गहरी न दोमट मिट्टी में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में देर से पकड़ वाले जाति न की बोनी करा। भाई बहनों, इन्हीं फसल की बुआई कतार में करना का लेना 10 से 12 किलोग्राम बीज न छिटकवा बोनी का लेना 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर पर्याप्त रहे। रोपाई का लेना 5 किलो प्रति हेक्टर की दर से बीज का नर्सरी में उगाई न रोपाई करी जाए सकज। कतार में बोनी करना से निंदाई गुड़ाई में सुविधा रहे, उत्पादन में भी वृद्धि हो। जैसे बरसात चालू है तुरंत रागी की बोनी करी देवा। शीघ्र बोनी करना से उपज अच्छी हो, रोग न कीट का प्रभाव भी कम हो जाए। बोर्णी का पूर्व बीज का पेरासान या डाइथेनेम 45 या वाविस्टिन या विटावेक्स 3 किलोग्राम प्रति किलो बीज का हिसाब से बीजोपचार करा। असो करना से बीज जनित रोग न मिट्टी जनित रोग से फसल की सुरक्षा हुई जाए। कतार में बोर्णी करना पर कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर न पौधा

0: से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर अच्छी रहे। एक ही बोनी 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर करी जाए। रागी में 6 से 8 लाख पौधा प्रति हेक्टर होना चाहिए। एक ही उन्नत किस्म नंबर 6 रागी की RAU 8, VL 317, JNR 852, JNR 2, JNR 1008। खाद न उर्वरक की बात करा तो किसान भाई बहन, रागी का लेना 40 किलो नत्रजन प्रति हेक्टर, 20 किलो स्फूर प्रति हेक्टर न 10 किलो पोटास प्रति हेक्टर को उपयोग करना से उपज में 20 से 25% वृद्धि देखी गई। अब बात करा निराई गुड़ाई की तो बुआई का 20 से 30 दिन के अंदर एक बार हाथ से निंदाई करना चाहिए। जहाँ पौधा नहीं उगया हो वहाँ पर अधिक उगया पौधा का उखाड़ी न रोपाई करी न पौधा की संख्या उपयुक्त करना चाहिए। ये कार्य 20 से 25 दिन के अंदर करी लेना चाहिए। ये कार्य पानी गिरता समय अरु अच्छो रहे। बुआई का पश्चात अंकुरण पूर्व एट्राजिन 1 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना सी सक्रिय न चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं उगता है, न निंदाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई बहनों, एमा लगना वाला जो कीट छे ओमा छे आर्मी वार्म, कटवर्म, वाइट ग्रब, स्टेम बोरर, बीमारी नाम झुलसन, लीप ब्लास्ट न नेक ब्लास्ट। भाई बहनों, इन्हीं बीमारी का उपचार का लेना कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उपयुक्त दवाई को उपयोग करी न इन्हें रोक न का रोकी सको। भाई बहनों, आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज, राम राम।
1: रागी की उन्नत उत्पादन तकनीक, इस विषय पर अभी आपने सुनी कृषि चर्चा। ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए वार्ता प्रकृति और हम, वार्ताकार अमित मिश्रा।

सुनहरे पत्र सुबह 7:20 पर आपके पत्रों को और ईमेल्स को लेकर हाजिर होंगे हम, और आपके जवाब देंगे कार्यक्रम प्रमुख चिन्मय दीक्षित।

सुगम संगीत सुनिएगा सुबह 8:15 बजे और 8:30 बजे पर हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9 बजे से राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से ही सुबह 10 बजे अनुप्रसारित करेंगे।

आप अपनी पसंद के गीत सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में आज सुबह 10:05 पर। 10:40 पर होगा निमाड़ी लोक संगीत का कार्यक्रम और 11 बजे से पुनः राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का कार्यक्रम उमंग, इसे आप सुनेंगे आज शाम 5:30 पर। 6 बजे होगा कार्यक्रम युववाणी, आज का क्रम इंद्रधनुष। फिल्म संगीत का लुत्फ लीजिएगा शाम 6:30 से, और 7:21 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। 9:30 से आप सुन सकेंगे पुनः विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी खंडवा से लीजिए अब सुनिए ताजा खबर।
2: आज की ताजा खबर

जिले के शासकीय विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और विभिन्न शासकीय कार्यालयों की छतों पर जल्द ही रूफटॉप और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के रेस्को मॉडल के तहत यह कार्य किया जाएगा। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न शासकीय संस्थानों के लिए विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। रूफटॉप और संयंत्रों की स्थापना से सरकारी संस्थानों के बिजली बिल में दीर्घकालीन बचत होगी। शासकीय सांदीपनि विद्यालय हरसूद में बुधवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायाधीश हरसूद राकेश भिंडे ने विद्यार्थियों को विधिक सेवाएं एवं उसके संरक्षण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या, शोषण, हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में बच्चों की अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव तत्पर रहता है। जिले में मानसून की स्थिति अनियमित बनी हुई है। अलनीनो के असर से कहीं अचानक से तेज बारिश तो कहीं सूखे की स्थिति बन रही है, वहीं कहीं पर रिमझिम बारिश हो रही है। जिले में इस बारिश का सकारात्मक असर जलाशयों पर दिखाई देने लगा है। नर्मदा के ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 2.26 मीटर बढ़ चुका है। जलकर की वार्षिक राशि का एक मुश्त अग्रिम भुगतान करने वाले करदाताओं को एक माह के जलकर के बराबर राशि की विशेष छूट दी जाएगी। राजस्व अधिकारी प्रकाश राजपूत ने बताया, 10 जुलाई से करदाताओं को छूट दी जाएगी।

खेल समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को ब्रिस्टल में 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 मैच खेला जाएगा। सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम के लिए यह करो या मरो का मैच होगा। भारत अगर यहां हारा तो 7 साल बाद लगातार 2 T20 सीरीज गवा देगा।

0: वर्षा हो चुकी है। अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संकलन फैयाज खान का।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए आज सुनिए वार्ता प्रकृति और हम। वार्ताकार हैं अमित मिश्रा।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्कार। मैं अमित मिश्रा एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर अपनी वार्ता को लेकर, जिसका शीर्षक है प्रकृति और हम। प्रकृति अर्थात वह शक्ति जिसने हमें जीवन दिया है, हमारे चारों ओर फैली वह अद्भुत और रहस्यमयी संरचना है जिसमें धरती, आकाश, जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत, नदियां और मौसम सभी शामिल हैं। हम मनुष्य प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन विडंबना यह है कि हम स्वयं को उससे अलग समझ बैठे हैं। इस वार्ता में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध क्या है, हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए ताकि यह संबंध संतुलित बना रहे। प्रकृति हमारे अस्तित्व की मूलभूत आधारशिला है। यदि सूर्य ना हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी की सतह पर जीवन जल, वायु और उपजाऊ भूमि के कारण ही संभव है। जंगल हमारे लिए शुद्ध वायु देते हैं, नदियाँ पीने का पानी और सिंचाई प्रदान करती हैं, पहाड़ न केवल जलवायु को संतुलित रखते हैं बल्कि जैव विविधता के भी पोषक हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत न केवल मौसम को सुंदर बनाती हैं बल्कि कृषि, संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित करती हैं। प्रकृति हमें भोजन, वस्त्र, आश्रय, औषधियाँ, ईंधन और मनोरंजन तक प्रदान करती हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रकृति के बिना हमारा जीवन शून्य है, लेकिन विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और लालच ने हमें विनाश के मार्ग पर धकेल दिया है। हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की, नदियों को गंदा किया, जीव जंतुओं का निवास नष्ट किया और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दिया। प्लास्टिक, केमिकल्स, ध्वनि और वायु प्रदूषण ने पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ग्लेशियर पिघलना, असमय वर्षा और महामारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति जब अपनी सहनशीलता की सीमा पार कर चुकी होती है तो वह चेतावनी देने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तापमान में लगातार वृद्धि से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है जिससे द्वीप डूबने के कगार पर हैं। हिमालय की बर्फ तेजी से पिघल रही है जिससे भविष्य में पानी की कमी और बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वनों की कटाई के कारण जैव विविधता कम हो रही है और अनेक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी

अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के असंतुलन का परिणाम कही जा सकती हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या हमने उसे कुछ लौटाया? अब समय आ गया है कि हम आत्मचिंतन करें और अपने कर्तव्यों को समझें। हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना को अपनाना होगा। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, बिजली की बचत करनी चाहिए, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए और पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। बच्चों में बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव जगाना आवश्यक है। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए केवल सरकार ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, हरित भारत अभियान, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन आदि तभी सफल हो सकते हैं जब हम ईमानदारी से सहयोग करें। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थानों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी छोटी छोटी आदतों से बदलाव लाना होगा, जैसे थैला साथ ले जाना, पौधे लगाना, प्लास्टिक का त्याग करना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। प्रकृति हमें केवल संसाधन ही नहीं देती, वह हमें धैर्य, सहनशीलता, सामंजस्य और त्याग जैसे मानवीय गुण भी सिखाती है। सूर्य बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, पेड़ फल देकर स्वयं मिट्टी में मिल जाते हैं, नदियां निरंतर बहती हैं और दूसरों की प्यास बुझाती हैं। यदि हम इन गुणों को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि समाज और पृथ्वी भी एक सुंदर स्थान बन जाएगी। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अत्यंत गहरा और परस्पर निर्भर है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगी। यदि हम उसका शोषण करेंगे तो वह हमें विनाश की ओर ले जाएगी। हमें यह समझने की जरूरत है, हम प्रकृति के मालिक नहीं, उसके रक्षक हैं। प्रकृति का सानिध्य आध्यात्मिक सुख देता है, और जब बात प्रकृति और आध्यात्मिक सुख की हो तो गुरु पूर्णिमा के महान पर्व की याद भला क्यों ना की जाए। अब बहुत जल्द गुरु पूर्णिमा का उत्सव आने वाला है। यह वह समय है जो हर एक खंडवावासी के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह नगरी ही महान संत दादाजी धुनीवाले की है। दादाजी महाराज इस युग के महान संत रहे हैं। भारत ऋषि और मुनियों की भूमि है। ऋषि मुनि भी अपना आश्रम जंगलों में, नदियों और पहाड़ों के समीप बनाते थे। उनके आवास प्रकृति के करीब होते थे, क्योंकि प्रकृति आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। इसके सानिध्य में वे अपना हवन एवं तप इत्यादि का काम बड़ी तन्मयता से करते थे, और इससे उन्हें दैवीय सुख की अनुभूति होती थी। खंडवा की पावन धरा अब गुरु पूर्णिमा के अवसर में दादाजी के रंग में रंग जाने वाली है। ऐसे में मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि गुरु पूर्णिमा के मेले में आप सभी आएं, दादाजी महाराज की समाधि स्थल के दर्शन कर आध्यात्मिक सुख का भी लाभ लें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि मेले में स्वच्छता, साफ सफाई की व्यवस्था में सहयोग करें। प्रकृति का सामीप्य मानसिक शांति प्रदान करता है, तनाव एवं चिंताओं को दूर कर देता है। अक्सर तनावग्रस्त लोगों को डॉक्टर हिल स्टेशन में जाकर के कुछ वक्त गुजारने की भी सलाह देते हैं, लेकिन आज के दौर में जो लोग प्रकृति का सामीप्य प्राप्त करने के लिए यात्राएं करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि वह मानसिक शांति की जगह वहां पर भी सोशल मीडिया में छाए रहने की अपनी प्रवृत्ति के ही गुलाम बने रहते हैं। कुछ लोग तो ऊंचाई से बहते झरने की बहुत नज़दीक से फोटो लेने और कुछ एडवेंचर करके अपनी पोस्ट में लाइक बढ़ाने की कोशिश में अपनी जान तक गंवा चुके हैं। हम सब ने ऐसी अनेकों घटनाएं न्यूज़ चैनल में देखी और सुनी हैं। समय की मांग है कि हम अपने व्यवहार, सोच और जीवन शैली में बदलाव लाएं। यदि हम आज नहीं जागे तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। इस धरती को हरा भरा, स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। यही हमारे भविष्य की सुरक्षा है और यही हमारी अगली पीढ़ी के प्रति सच्चा उत्तरदायित्व भी। तो प्रिय श्रोताओं, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति तुम्हें जीवन और खुशहाली देगी। धन्यवाद।

0: आज की ये वार्ता थी प्रकृति और हम, वार्ताकार अमित मिश्रा। आज का विशेष कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: सुबह के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 3 दशक से जारी सरदार सरोवर विवाद का सर्वसम्मति से हुआ समाधान। आज भिंड में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश के 9 जिलों में अति भारी और 11 जिलों में भारी बारिश की संभावना। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 4वां मुकाबला आज ब्रिस्टल में होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लेने और दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। वे मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया और इसे अविस्मरणीय बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि अनुमान वैश्विक अनुमानों से 2 गुने से भी अधिक हैं। रिपोर्ट में इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% बताई गई है। इसमें अगले वर्ष 3.4% की वृद्धि की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 4थी नवीन विनिर्माण इकाई का लोकार्पण कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान इरिगेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कंपनी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए संबोधित किया।
2: 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग किसान कल्याण वर्ष में किसान की इंडस्ट्री हो या रेलवे, अब बहुत तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग प्रकार की दुनिया में पहुंच रही है। ऐसे में हमारे उद्यमी सागोदी ब्रदर्स ने अपनी रेल के विभिन्न प्रकार की एक्सेसरीज बनाने का और रेलवे कोच बनाने तक का भी जो संकल्प लिया, हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से 272 करोड़ के अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली सभी प्रकार के वाहन साधनों की एक बड़ी इंडस्ट्री का भी हमने लोकार्पण किया। बीते 10 दिन

0: अंदर ही लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा अलग अलग कार के कामों का भूमिपूजन लोकार्पण किया है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कल कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लगभग 3 दशक से जारी पुनर्वास एवं पुनर्वसाहट व्यय विवाद का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। इस निर्णय से मध्य प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से संचालित 15 दिवसीय प्रदेशव्यापी सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा 2.0 जन जागरूकता अभियान का कल समापन हुआ। भोपाल में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि 3 पूर्व प्रमुख चुनौतियों साइबर अपराध, नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक तथा नशे से दूरी है जरूरी व्यापक जन जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं।
3: वर्ष 2025 में हमने सेफ क्लिक अभियान साइबर जागरूकता का चलाया था और उसके काफी अच्छे परिणाम देखे गए थे। उसके पश्चात प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट में बहुत हद तक रोक लग गई थी, तो चूंकि साइबर फ्रॉडस्टर्स लगातार अपनी मॉडस ऑपरेंडी अपनी कार्यप्रणाली चेंज करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए पब्लिक को जागरूक करना महसूस किया जा रहा था। सेफ क्लिक 2.0 का 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और 15 दिवसीय ये अभियान सारे जिलों में बहुत ही लगन से मेहनत से चलाया गया। इसमें कई विभाग, कई संगठन, कई NGOs को हमने जोड़ा और करोड़ों की रीच इसकी रही।
1: 15 दिवसीय इस अभियान का समापन समारोह खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में भी आयोजित किया गया। वहीं मंडला, आगरमालवा, झाबुआ समेत अन्य जिलों में भी अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार और अद्यतन डाटा सेंटर 3.0 परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार मध्य प्रदेश स्टेट डाटा का आधुनिकीकरण, IT एवं डिजास्टर रिकवरी क्षमता विस्तार तथा संबंधित नॉन IT अवसंरचना विकास किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त भागीदारी से भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर 12 दिसंबर 2012 से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा उप निरीक्षक एवं सूबेदार भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सूबेदार एवं उप निरीक्षक संवर्ग के 436 पुलिस अधिकारी मिलने जा रहे हैं। मंडल द्वारा 7 जुलाई को अंतिम परीक्षा परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया गया, जिसमें 87% पदों का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें कुल 436 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें 313 पुरुष एवं 123 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के लिए 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना ही होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार कल पन्ना, छतरपुर और खंडवा सहित कई जिलों में कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने आज भिंड जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, रतलाम, आगरमालवा, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसी के साथ विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और मंदसौर सहित 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें जिला पंचायत सभागार में 13 से 15 जुलाई और 21 से 24

जुलाई तक होंगी। गुना की तहसील कुमराज के ग्राम बिरियाई में जिला प्रशासन द्वारा ग्राम चौपाल और सामाजिक संवाद सह रोजगार उन्मुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। मानसून की सक्रियता के चलते जबलपुर के रानी अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी जलाशय में बीते 5 दिनों में बांध का जलस्तर 3 मीटर बढ़ गया है। 31 जुलाई से पहले बांध के गेट खोले जा सकते हैं। शहडोल संभाग कमिश्नर ने ग्राम पंचायत मोहतरा के पोषक ग्राम चुनपथरी स्थित एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी पर आयोग मित्रों के साथ मानवाधिकार संरक्षण सहित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मंडला जिले में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सांची जनपद के ग्राम सनखेड़ी में 2,90,00,000 रुपये की लागत से बने क्षमता के नए उपकेंद्र का लोकार्पण किया। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे और बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने प्रभातपट्टन तहसील के ऐतिहासिक शेरगढ़ किले और वर्धा डैम पहुंचकर सुरक्षा एवं पर्यटन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुनहरे पत्र कार्यक्रम।
2: सुनहरे पत्र।

0: सुनहरे पत्र कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत इस्तकबाल करती है आपकी रेडियो दोस्त फिरदौस। सभी को सलाम नमस्ते। और हमारे स्टूडियो में हाजिर हो चुके हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख चिन्मय दीक्षित जी। सर आपको भी नमस्ते।
1: नमस्ते, और आपके साथ साथ सभी श्रोताओं को तहे दिल से उनका इस्तकबाल हम भी करते हैं और उन्हें कहते हैं सुबह की नमस्कार
0: जी। और हम ईमेल लेकर हाजिर हो गए हैं सब श्रोताओं के, तो आप कहें तो पढ़ना शुरू करें।
1: अविलंब आरंभ करिए।
0: अभिवादन, हम आकाशवाणी खंडवा के नियमित श्रोता हैं, आपके केंद्र से सभी कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, अपने ग्रुप का नाम भी लिखा है उसके अंदर शेयर भी करते हैं। कुछ दिनों से हमारे ईमेल को स्थान नहीं मिल रहा है, श्रीमान जी से अनुरोध है इस ओर ध्यान दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ ये फेसबुक पर भी लाइव शो देते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश पायल, अंकित खंडवा के अब्दुल गफ्फार डाबर जी।
1: अरे वाह, तो देखिए आज के खत के इस कार्यक्रम का शुरुआत हमने आप ही के पत्र को लेकर किया है, तो आपकी ये शिकायत तो दूर हो गई होगी। अब लेते हैं अगला ईमेल
0: जी। आकाशवाणी खंडवा को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। आओ कुछ करें और कर जाएं, वाह वाह वाह वाह। आज आदरणीय वरिष्ठ शिक्षाविद, ये उस दिन की बात बता रहे हैं, आज आदरणीय वरिष्ठ शिक्षाविद, साहित्यकार और चिंतक श्रद्धेय श्रीकांत साकल्य जी की रचना सुनने का अवसर मिला। इस प्रेरणादायी और सुंदर रचना को उनकी चित परिचित प्रभावी शैली में सुनकर मन प्रसन्न हुआ। सदैव की तरह आदरणीय साकल्य जी की अर्थपूर्ण रचनाएं सकारात्मकता, प्रेरणा और ऊर्जा से कूट कूट कर भरी रहती है, और आज इसका हमें पुनः आनंद मिला। आपसे एक निवेदन है कि वर्तमान समय में इस उच्च स्तर और शैली के कुछ ही साहित्यकार और रचनाकार हमारे बीच में हैं। इन्हें बारंबार आमंत्रित किया जाए जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले और वह भी कविता के क्षेत्र में, रचना और साहित्य सृजन के क्षेत्र में आगे बढ़े और यह परंपरा इसी तरह से कायम रहे।

0: पुनः आकाशवाणी का धन्यवाद कर रहे हैं। ये लिखने वाले हैं आलोक बिल्लोरे।
1: आलोक बिल्लोरे जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको ये जो रचना पाठ था श्रीकांत सकल्लई जी का, वो पसंद आया। हम उन्हें समय समय पर बुलाते रहते हैं ताकि आपके साथ साथ हमारी समस्त श्रोता वर्ग जो है वो उनके और उनकी रचनाओं का लाभ ले सके और अपने जीवन में अगर कुछ सकारात्मक परिवर्तन करना चाहें तो जरूर कर सकें।
0: बिल्कुल। इसी तारतम्य में एक और पत्र हमें मिला है। श्रीमान जी, 7 जून को श्री साकल्ले जी द्वारा प्रस्तुत कविता हमें बहुत अच्छी लगी है। थैंक्स एंड रिकार्ड, आलोक साकल्ले।
1: आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ईमेल के लिए। इसके अतिरिक्त आपको कोई कार्यक्रम पसंद आया हो तो भी हमें लिखकर जरूर बताइएगा।
0: इन्होंने अपना एड्रेस भी नहीं लिखा, सिर्फ साकल्ले जी नाम लिखा है।
1: अच्छा, और ये जरूर लिखकर बताएं कि आप पत्र हमें लिख कहां से रहे हैं।
0: जी, अगला है, साकल्ले जी की भावपूर्ण कविताएं हृदय को छू गई। आकाशवाणी केंद्र खंडवा से प्रसारित ऐसे साहित्यिक क्षणों का अभिनंदन है। आशा है हमारी शुद्धा को तृप्त करते रहेंगे, आभार। ये लिखने वाले हैं राजपुर जिला बड़वानी के प्रमोद त्रिवेदी।
1: आहा, क्या बात है। तो बड़वानी से प्रमोद जी, आपको भी इस पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं और ये आग्रह भी करते हैं कि इसके साथ साथ अन्य कार्यक्रमों के विषय में भी यदि आप सुन रहे हो तो हमें लिखकर अवगत जरूर कराएं अपनी भावनाओं से।
0: जी, अगला लेते हैं। कभी अनकही बातों की अदा है दोस्ती, कभी गम की दवा है दोस्ती, कमी है पूजने वालों की वरना जमी पर खुदा है दोस्ती। दिनांक 2 जुलाई का सुनहरे पत्र सुनहरा और दमदार लगा। चिन्मय दीक्षित जी और प्रशांत मालवी जी की धमाकेदार जोड़ी ने इसे पेश किया। ढेर सारे श्रोताओं की प्रतिक्रिया शामिल की गई और उतने ही सुंदर अंदाज में उनका जवाब दिया गया। जितनी भी तारीफ करें कम है। 4 जुलाई का सुबह निमाड़ी लोकगीत सुना, मजा आ गया। इसी दिन का आपके मित ये गीत नंबर 1 लगा। सुमधुर गीतों से सजा हुआ ये प्रोग्राम था जो दिल को छू गया। बेहतरीन अंदाज में इसे प्रस्तुत किया था विद्या सिंह जी ने। उन्होंने हमें पूरे आधे घंटे तक रेडियो से चिपकाए रखा। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और आपकी पूरी टीम को हम धन्यवाद करते हैं। ये है पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना, मोहम्मद रफी और बबलू मंसूरी।
1: क्या बात है, धन्यवाद आपको कि आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आ रही हैं। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने इतना सुंदर ईमेल हमें भेजा, उसके लिए आपका आभार बंधु।
0: जी, अगला है बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से लिखते हैं ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। कार्यक्रम पेशकर्ता जी को नमस्कार। दिनांक 3 मई को गायक अमित कुमार जी के जन्मदिन था, किंतु अफसोस एक भी गीत नहीं सुनवाया गया। हमें बड़ा दुख हुआ। खंडवा के किशोरदा के सुपुत्र का, सुप्रसिद्ध गायक अमित कुमार जी का जन्मदिन और उन्हें याद तक न किया पेशकर्ता जी ने। आगे लिख रहे हैं, कृषि चर्चा में स्मित्रा बरोले जी ने, वर्मी कंपोस्ट खाद पर सीमा कराहे जी ने, प्लास्टिक से बचाओ बहुत ही उपयुक्त ज्ञानवर्धक जानकारी दी। गुजरे सप्ताह में आपके मित ये गीत कार्यक्रम बेस्ट रहा। विद्या सिंह जी, आरती जी, राखी जैन जी और दीपमाला जी ने सारे ईमेल और पत्र शामिल किए, सभी श्रोताओं को खुश कर दिया, मजा आ गया। सभी पेशकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद आपका। देखिए, अमित कुमार जी का उस दिवस पर हम आपको ये गीत नहीं सुनवा पाए, ऐसा नहीं हो सकता। आकाशवाणी से प्रसारित तो अमित कुमार जी अवश्य हुए हैं। हाँ, ये संभव है कि उस दिन का सुबह का सुनहरे पल जो कार्यक्रम है उसमें अमित कुमार जी को शामिल ना किया गया हो, पर पूरे दिवस अमित कुमार जी का एक भी गीत ना बजा हो, यह असंभव है। बहरहाल, आपने इसके अतिरिक्त हमें लिखकर बताया कि आपको क्या क्या कार्यक्रम पसंद आए हैं, ये जानकर हमें अच्छा लगा और आगे भी अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिएगा।
0: जी, अगला लेते हैं, कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। महोदय जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं, पसंद आते हैं। 2 जुलाई का सुनहरे पत्र कार्यक्रम लाजवाब लगा। इसी दिन का आपकी पसंद अच्छा लगा। प्रशांत मालवीय जी ने दिल को खुश कर दिया। 3 जुलाई को पराग गोखले जी, 4 जुलाई और 6 जुलाई को विद्या सिंह चौहान जी आपके मित गीत कार्यक्रम लाजवाब पेश कर दिया। 4 जुलाई का कैलाश सिंह और साथियों का गाया और 5 जुलाई का स्नेहलता पडोदी, ये भटोरे है, स्नेहलता भटोरे
1: जी, जी भटोरे
0: पटोती लिखा है, से निमाड़ी लोकगीत सुनवाए, इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं।
1: धन्यवाद आपका इस ईमेल के लिए। आपने लिखकर बताया आपको कौन कौन सी चीजें पसंद आई हैं, ये जानकर हमें हर्ष हुआ। आगे भी हमें ईमेल भेजते रहिएगा।
0: जी, अगला ले रहे हैं, दोनों दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: देश की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा के सभी प्रोग्राम हम सुनते हैं। पसंद नहीं, बहुत बहुत पसंद आते हैं। जानकारी युक्त, मुझे लगा पसंद नहीं आते हैं, जानकारी युक्त होते हैं। सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। 2 जुलाई को चिन्मय दीक्षित जी और प्रशांत मालवीय जी ने सुनहरे पत्र कार्यक्रम लाजवाब पेश किया, शुक्रिया। उसी दिन आपके पसंद कार्यक्रम में भी प्रशांत जी ने बहुत अच्छे गाने सुनवाए और हमारी पसंद को पूरा किया, यही उम्मीद लेकर आए हैं, धन्यवाद। एडवांस में पेशकर्ता जी, 3 जुलाई को जग्गूलाल ठाकरे साथियों, 4 जुलाई का कैलाश सिंह और

0: साथियों के निवारी लोकगीत सुनवाए गए। धन्यवाद। 7 जुलाई को लोकरंजनी कार्यक्रम में मनीषा चौबे जी ने लाजवाब इसे पेश किया। तीजन बाई के चले जाने पर बहुत दुख हुआ, उनकी आवाज में कोई भी लोकगीत सुनाए, शत शत नमन। ये लिखने वाले हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी।
1: क्या बात है, ये बात सच है कि सोनी दंपति को हम कहना चाहेंगे, ये बात सच है कि इस तीजन बाई का जाना जो है, वो तीजन बाई एक सांस्कृतिक धरोहर थी, केवल लोक संगीत की कला में नहीं, पंडवानी की कला में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एकाकी वो धरोहर रही हैं। और उनके जाने से बहुत बड़ी हानि हुई है इस जगत को, किंतु मजबूरन हमारे पास संभवतः तीजन बाई के गीत नहीं हैं, तो हम आपको सुनवा नहीं पाएंगे। और पंडवानी शायद निमाड़ी में उपलब्ध नहीं है, तो उसकी एक बाध्यता के चलते हम आकाशवाणी खंडवा से आपको उसका प्रसारण सुनवाने में शायद अक्षम रहें, पर किसी न किसी आकाशवाणी में यदि आप कभी आकाशवाणी रायपुर ट्यून करेंगे तो आपको ये सुनने को मिल, उनकी रचनाएं सुनने को मिल सकती हैं। और आपके इस पत्र के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला लेते हैं कार्यक्रम प्रसारक आप दोनों साथियों का, हमारा जय श्री राधे कृष्णा।
1: राधे कृष्णा,
0: पिछले सप्ताह सुनहरे कार्यक्रम चिन्मय जी और मनीष शर्मा जी के साथ सुना। मनीष शर्मा जी के साथ
1: पिछले सप्ताह नहीं, उसके पहले।
0: अच्छा, हाँ। ओके, सुना, काफी पसंद आया। काफी श्रोताओं के प्रश्नों के शांतिपूर्वक जवाब दिए गए। साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा में खंडवा से जुड़ी गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम यह होता है। इसे बड़ी बहन विद्या सिंह चौहान जी ने बहुत सारी जानकारी के साथ हमें सुनवाया, पसंद आया। इसी दिन का आपके मित्र ये गीत भी इनको पसंद आया। कुछ श्रोता एक ही मेल में, ये शिकायत कर रहे हैं, कुछ श्रोता एक ही मेल में अलग अलग पते से बहुत सारे नाम भेजते हैं। क्या वह श्रोता खुद रेडियो नहीं सुनते हैं, या फिर स्वयं मेल भेजेंगे तो क्या बुराई हो जाएगी?
1: बहुत अच्छा सुझाव है
0: जी,
1: आपका।
0: शिकायत है?
1: नहीं नहीं, अरे शिकायती सुझाव है, पर बहुत अच्छा सुझाव है हमारे श्रोताओं के लिए
0: जी। अगर एक श्रोता लगभग 10 जगह से नाम भेजेंगे तो क्या ये उचित है?
1: हाँ, गलत बात है
0: जी, गलत बात है। ये तो श्रोताओं ने भी समझना चाहिए ना।
1: हाँ, सही बात है।
0: आगे लिखते हैं, पंकज कुमार लाड़ जी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। ममता डोडिया जी, आरती बहन जी, दीपमाला बहन जी, श्वेता जी, पराग जी, तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहे हैं, आभार। गुड मॉर्निंग खंडवा के लिए बहन फिरदौस जी का भी आभार कर रहे हैं। कार्यक्रम आपके मित्र ये गीत कार्यक्रम में बहन कीर्ति गोखले जी की प्रस्तुति इनको काफी पसंद आई है। फिल्म ताल से लेकर फिल्म प्यासा सावन तक के गीतों का चयन काफी मनमोहक लगा। हमारे निमाड़ की संस्कृति पर आधारित निमाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी ये बड़े शांतिपूर्वक ढंग से सुनते हैं। प्रस्तुतकर्ता बड़ी बहन मनीषा चौबे जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जितेंद्र आशा पारिक अभिनीत फिल्म की स्टोरी और गाने इन्होंने सुने, इन्हें बहुत पसंद आए। मनीष कुमार शर्मा जी को धन्यवाद दे रहे हैं। महोदय जी, कहीं कहीं सप्ताह से देख रहे हैं, कहीं सप्ताह से देख रहे हैं, हमारे पत्र को कार्यक्रम के अंतिम में शामिल किया जाता है। पत्र पढ़ने की वजह सिर्फ नाम पढ़कर पत्र को समाप्त कर दिया जाता है। क्या हमारे पत्र में पढ़ने जैसी कोई गुणवत्ता नहीं होती है? अगर ऐसा होता है तो हम पत्र लिखना बंद कर दें। शांतिपूर्वक जवाब अवश्य दीजिए, धन्यवाद। दिन का आपके मित्र ये गीत कार्यक्रम प्रस्तुत करता बहन ममता डोडिया जी का इन्होंने पसंद किया है। प्रातःकालीन संध्याकालीन सभा में युवाणी के तमाम साथी प्रतिदिन अलग अलग विषय पर कार्यक्रम लेकर आते हैं, वो भी हम पसंद करते हैं। अब ये लिखने वाले कौन है? माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सेन इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी।
1: क्या बात है, तो सेन दंपति और चौधरी दंपति को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आज आपका पत्र बिल्कुल भी अंतिम में नहीं
0: अंतिम
1: लिया
0: में
1: गया।
0: नहीं था, हाँ, बिल्कुल।
1: मेरे ख्याल से शुरुआती पत्रों में है, पहले 10 पत्रों में ही है,
0: दूसरे पेज पे आ गया।
1: हाँ, तो ये एक शिकायत तो दूर हो गई होगी। दूसरा, आपने बहुत ही जबरदस्त सुझाव दिया है। आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इस पर अमल जरूर करें और अपने अपने नाम से अपने अपने ईमेल भेजें, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भेजें, बच्चों की प्रतिक्रियाएं, बच्चों के अनुकूल, वो उनकी बाल सुलभ उसमें रहती हैं अभिव्यक्तियों में, आपकी आपके अनुसार रहेंगी। सबका एक साथ हो जाना तो ये बात सही है कि मोनोटोनस यानी कि एक रूपता कर देता है कार्यक्रम में, तो अगर ऐसा कर सकें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है।
0: और कुछ लोग करते भी हैं, इधर भी नाम लिखते चार चार एड्रेस डाल देते
1: हैं। और एक ही व्यक्ति ऐसा ना करे, क्योंकि फिर तो वो कार्यक्रम को एक प्रकार से हाईजैक करने जैसी बात हो जाती है, है ना। और हम बाध्य हैं बंधुवर, आपको हम उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि हम बाध्य हैं, हमारे पास जो भी श्रोता अपना ईमेल भेजेगा हम उसे जरूर लेंगे, हम क्यों उसे ना लें, है ना। तो उसमें हम कोई वो तो करते नहीं।

0: नहीं है कि इनने ये एक ही परिवार के लोग हैं, हम किसी के परिजनों को पहचानते भी नहीं है, तो ये बड़ा कठिन हो जाता है फिल्टर करना। हाँ,
1: अगला लेते हैं। सुनहरे पत्र प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा पुरखुलूस आदाब।
0: आदाब।
1: 2 जुलाई 2026 को प्रसारित यह प्रोग्राम दीक्षित जी और प्रशांत जी के साथ सुना, अच्छा लगा। इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम कर्णप्रिय रहा, कोटि कोटि बधाई। 2 जुलाई का ही कृषि चर्चा अच्छा लगा, इसमें पत्ता गोभी की विशेष खेती इस बारे में जानकारी दी गई। अपूर्वा जी ने ताजा खबर भी बहुत अच्छी बनाई, इनकी भी तारीफ हो रही है।
0: क्या बात है।
1: 1 जुलाई 2026 को एक ही फिल्म के तहत फिल्म विवाह की कहानी और गीत एक बार फिर झूमने पर मजबूर कर गए, राखी जी को बधाई। 1 जुलाई और 4 जुलाई का आपके मित्र गीत प्रोग्राम सुना, राखी जी और विद्या जी को बधाई। निमाड़ी लोकगीत सुनकर दिल खुश हो जाता है, आपको बधाई। नाम नहीं लिखा है। विशेष कार्यक्रम के तहत योगेश पगारे की वार्ता, रेवा तट पर बसे तीर्थ स्थल, बेहद कर्णप्रिय रही, बधाई। आज के दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये है पुराना तालाब ढुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, निशा परवीन, हुमा और आसमानाज अंसारी।
0: क्या बात है। तो आसमानाज होंगे। हाँ, अंसारी परिवार को हमारी तरफ से इस ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारे कार्यक्रमों का जिक्र किया, आपने विशेषकर सुबह प्रसारित होने वाली ताज़ा खबर तक का जिक्र किया है, तो ये जानकर हमें ये समझ में आता है कि आप हमारे काफ़ी सुधी श्रोता हैं। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आपका हर बार ईमेल हमें प्राप्त होता है कार्यक्रमों के विस्तृत विवरण के साथ। तो आगे भी हमें ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा, और पत्र लिखने के लिए बहुत धन्यवाद बंधुवर।
1: आपने बरसाने की बात की तो याद आ गया कि हाँ, बारिश थोड़ी कम हो रही है, क्यों ना गाना सुन लिया जाए।
0: जरूर, हो सकता है इससे कुछ मौसम में परिवर्तन आ जाए।
1: शायद बरखा बरस जाए।

0: हम भी चाहते हैं कि बरखा रानी जम के बरस जाए,
1: क्योंकि हाँ भाई बहुत जरूरत है इस जम के बरसने की।
0: जी अगला लेते हैं। मंगलवार 7 जुलाई को प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी खंडवा के विविधा कार्यक्रम में प्रसारित साहित्य रत्न और प्रख्यात शिक्षाविद परम श्रद्धे श्रीकांत साकल्य सर की काव्य रचनाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेपानगर क्षेत्र के द्रोणाचार्य श्रद्धे साकल्य सर को सुनना मात्र कविता सुनना नहीं, बल्कि भाषा, विचार और व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की एक सतत प्रक्रिया है। क्या बात है। साहित्य के विषय में हम जैसे असंख्य एकलव्यों के लिए वे एक चलते फिरते प्रशिक्षण संस्थान है। क्या उपमा दी गई है। उनकी प्रत्येक रचना संवेदना, संस्कार और साहित्यिक गरिमा का सुंदर संगम है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी खंडवा का हृदय से आभार कर रहे हैं और साथ ही आदरणीय साकल्य सर को भी सादर प्रणाम कर रहे हैं। ये लिखने वाले हैं संदीप ठाकरे नेपानगर से।
1: क्या बात है
0: जी।
1: संदीप ठाकरे जी, आपके इस पत्र के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि गुरु के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो समस्त इस पत्र में उभर कर आई हैं। तो आगे भी आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी ऐसी ही सारगर्भित टिप्पणी भेजते रहिएगा और इस पत्र के लिए आपका आभार बंधु।
0: साकल्य जी की रचनाएं सच में बहुत बढ़िया थी
1: वास्तव में
0: जी। अगला लेते हैं। सुनहरे पत्र कार्यक्रम चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू।
1: अच्छा,
0: ये लिख रहे हैं आकाशवाणी खंडवा के प्रसारण बड़ा ही सुंदर आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण बड़ा ही सुंदर आनंदमय रहता है। सभी श्रोताओं का मन मोह लिया करते हैं। आकाशवाणी खंडवा के सभी उद्घोषक साथियों के सुमधुर आवाज आकाशवाणी खंडवा के प्रसारण को हम दिल से सुनते हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह में एक नया समय और एक नया दिन शनिवार 4 जुलाई को शाम 5:30 पर फोन करे गीत सुने कार्यक्रम सुनने को मिला। बेहतरीन अंदाज, मनमोहक आवाज से कार्यक्रम में शिरकत हुए थे भाई प्रशांत मालवी जी। वाकई काबिल तारीफ प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। ओहो
1: ये है।
0: जी। और भाई प्रशांत मालवी जी से बात करके बड़ा ही आनंद आया, दिल गदगद हो गया। और इसी क्रम में 26 जून को सुबह सुबह सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुना, जिनमें चिन्मय दीक्षित जी और प्रशांत मालवी जी ने शानदार बेहतरीन प्रस्तुति दी, आनंदित कर गया। और भाई पराग गोखले जी, विद्यासी चौहान जी, बहन राखी जैन, बहन आयशा जी और साथ ही भाई मनीष शर्मा जी की बेहतरीन प्रस्तुति में आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने को मिला। तन मन झूम गया। आपकी पसंद कार्यक्रम में प्रशांत मालवीय जी ने सुंदर प्रस्तुति दी। समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। ऐसे सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, मनमोहक, सदाबहार समागम और शानदार, जानदार, मधुर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी खंडवा पूरे परिवार को बधाई दे रहे हैं। स्वीकार कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंधुवर। हमें बहुत अच्छा लगा कि पहली चीज तो आपने इतना भर के हमें पत्र लिखा और दूसरा उसका कारण भी समझ में आया कि आपका पत्र आपके मीत ये गीत में शामिल हुआ
0: और फोन पे बात
1: उससे आप काफी प्रफुल्लित रहे और फोन पे आपकी बात भी हुई। तो आशा करते हैं कि आज के इस पत्र को सुनकर भी आप खुश हो जाएंगे और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से ऐसे ही आगे भी अवगत कराते रहेंगे।
0: सुनहरे पत्र प्रोग्राम के नियमित श्रोता हैं, हमारा पसंदीदा प्रोग्राम है, कोटि कोटि बधाई देते हैं। 26 और 30 जून को प्रसारित आपके मीत ये गीत प्रोग्राम लुभावना लगा। नाजमा जी, दीपमाला जी को बधाई कर रहे हैं। फिल्म कारवा की तारीफ की है। आकाशवाणी खंडवा परिवार के साथ मनीष शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। निमाड़ी लोकगीत भी पसंद करते हैं, ये हैं वसीम अकरम, अजीम वकार और गुड़िया खातून।
1: क्या बात है, धन्यवाद आपका। आपने बताया आपको कौन कौन और कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं और किन किन प्रस्तोताओं की प्रस्तुति अच्छी लग रही है
0: जी। अगला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम कपूर, सोनम, सना और डॉक्टर अदीबा।
1: अच्छा,
0: अभी हम सुनहरे पत्र प्रोग्राम सुन रहे हैं, सुनकर दिल खुश हो रहा है। ये हमारा पसंदीदा प्रोग्राम है। पत्र भी लिखते हैं, मेल भी भेजते हैं और बड़े लगन के साथ डालते हैं। प्रोग्राम में इसे शामिल कीजिएगा। 2 और 4 जुलाई का प्रसारित कार्यक्रम आपके मित्र ये गीत अच्छा लगा। राखी जी, विद्या जी को बधाई दे रहे हैं। फिल्म कारवा की कहानी और गीत पसंद आए हैं। शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं। दीपमाला जी का कार्यक्रम 30 जून का आपके मित्र ये गीत अच्छा लगा।
1: बढ़िया, देखिए आज हमने आपके पत्र को जरूर जगह दी है। आप खुश हो जाइए इसको जानकर और इससे प्रेरणा लेते हुए हमें आगे भी अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए। हमें अच्छा लगा ये समझकर कि आपको कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। आगे भी हमें बताते रहिएगा।
0: ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे सूरज कुमार ढाक से लिखते हैं। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। दिनांक 8 जुलाई का फिल्म एक ही फिल्म से के अंतर्गत हमें बहुत अच्छी लगी। इसमें कारवा की कहानी और गीत सुनवाए गए। गीत बहुत पसंद आते हैं। इस

0: फिल्म के गीत बहुत पसंद है। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए मनीष शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं।
1: हाँ?
0: आप हम आज से आपको सिर्फ दो नाम लिखकर भेजेंगे।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: आप ये नियम सभी श्रोताओं पर लागू कर दीजिए।
1: हम आग्रह कर सकते हैं अपने सभी श्रोताओं से कि आप जो है अपना नाम बताएं, आप कार्यक्रम का नाम बताएं, हमारे और अन्य प्रस्तुतकर्ताओं के नाम, हमारे उद्घोषक साथियों के नाम बताने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है। आपको बहुत अच्छा कुछ लग रहा है तो आप बेहद बिल्कुल बताइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, कई बार क्या होता है कि पूरे पत्र में नाम ही नाम,
0: उनकी फैमिली में हमसे हमारे दो नाम लिख के भेजेंगे।
1: नहीं, नहीं, बहुत नहीं, नाम लिख के पूरे परिवारों का नाम लिख के भेजिए, हर साथी का नाम लिखिए, जिसने उस कार्यक्रम को सुना है उसे उसका नाम लिखिए। हमारे नामों की इतनी आने की आवश्यकता नहीं है, हम ये कह रहे हैं
0: जी। नाम आकाशवाणी खंडवा पर भेजते हैं कार्यक्रम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कार्यक्रम नहीं सुनते हैं लेकिन फिर भी नाम भेज देते हैं और उनके नाम आ जाते हैं और हम जैसे लोगों के ईमेल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो आप कृपा करके स्थानीय श्रोताओं को पहले शामिल कीजिए।
1: हाँ, ये आपके जो ये जो आग्रह है, ये अच्छा आग्रह, ये भी इन्हीं ने किया है?
0: जी, इन्होंने किया।
1: अच्छा, तो ये बिल्कुल मतलब इसको अमल किया जा सकता है। स्थानीय श्रोताओं को प्राथमिकता हम देते हैं,
0: देते हैं जी,
1: ये बात सच है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पत्र छूट रहे हैं और स्थानीय और बाहर के लोगों को पहले प्राथमिकता मिल रही है, तो ये मतलब ऐसा है नहीं। फिर भी
0: पहले ऐसा होता था जब बाहर के लोग नहीं सुन पाते थे तो यही इन्हीं के नाम ज्यादा आते थे क्योंकि यही लोग सुनते थे। अब क्या है, सब बाहर के लोग भी सुन रहे हैं,
1: न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे सभी लोग सुन रहे हैं। देखिए, प्रतिक्रिया भी देते हैं। असली बात यह है कि बाहर और स्थानीय में कोई अब अंतर रहा नहीं है। हमारे लिए हमारे सभी श्रोता एक समान है, परंतु आप जो जितने सारे श्रोता हमें ईमेल लिखने का की जहमत उठा रहे हैं, हम उन सब के नाम लेने का प्रयत्न करते हैं
0: ताकि उन्होंने कोशिश की है तो वो
1: उसको
0: कारगर करते हैं। निमाड़ की सुरीली धड़ का आकाशवाणी खंडवा सुनहरे पत्र कार्यक्रम हर दिल अजीज मेजबानों को हमारा पुरखुलूस आदाब।
1: आदाब।
0: सबसे पहले तारीफ कर रहे हैं चिन्मय दीक्षित जी। चिन्मय दीक्षित जी और प्रशांत मालवीय जी ने श्रोताओं के पत्रों और ईमेल का जवाब सटीक, सधे और लाजवाब अंदाज में दिए। दोनों आदरणीय को हमारा साधुवाद। गुरुवार का आपके मीत ये गीत कार्यक्रम इनको पसंद आया है, लाजवाब रहा। सुनहरे पल और आपके मित्र ये गीत किसका दे रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। शनिवार का फोन करे गीत सुने भी पसंद आया है, बेहतरीन पेशकश के लिए प्रशांत जी को धन्यवाद कर रहे हैं। आपके मित्र ये गीत कार्यक्रम कानों में रस घोल गया, सुंदर सफल प्रस्तुति के लिए आरती शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग खंडवा की प्रस्तुति दिल को छू गई है, विद्या सिंह चौहान जी को बधाई दे रहे हैं। मंगलवार का फरमाइश निमाड़ी लोकगीत लोकरंजनी कार्यक्रम प्रस्तुति किसकी थी वो नहीं बता रहे हैं। आगे लिख रहे हैं एक ही फिल्म से के अंतर्गत कारवा फिल्म सुनवाई गई, मनीष शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं। आगे लिख रहे हैं एक सुझाव है एक ही फिल्म से के अंतर्गत दिलीप कुमार लीला चंद्रावरकर अभिनीत फिल्म बैराग की कहानी और सुमधुर गीत सुनवाए। बुधवार के आपके मित्र ये गीत कार्यक्रम में सुरेले गीतों ने समा बांध दिया, मनीष जी को फिर से बधाई। एयर खंडवा के मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए सभी का साधुवाद करते हैं। लिखने वाले हैं खंडवा के मोहम्मद रफीक, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू हसनैन और ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराडे।
1: अच्छा, चलिए, आपको आपने बताया कि आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आए, वो हमें जानकर अच्छा लगा। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कार्यक्रम के प्रस्तोता का नाम लिखा या ना लिखा हो, आपने कार्यक्रम में क्या पसंद किया वो अगर आप लिखकर बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पत्र लिखने के लिए आपका धन्यवाद बंधु
0: जी। निमाड़ क्षेत्र की सुरीली आवाज आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम सुनहरे पत्र के मेजबान साथियों को हमारा प्यार भरा आदाब। गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के ईमेल और पत्र शामिल किए गए। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता चिन्मय दीक्षित जी और प्रशांत मालवीय जी की जोड़ी ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इसी दिन आपकी पसंद कार्यक्रम लाजवाब पेशकश दी गई, बधाई। शुक्रवार का राग रंग आपके मित ये गीत कार्यक्रम कर्णप्रिय लगा, प्रस्तुतकर्ता को साधुवाद। शनिवार सुगम संगीत में सुरेले गीतों ने समा बांध दिया, शनिवार का आपके मित ये गीत भी अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता को बधाई। गुड मॉर्निंग खंडवा में लाजवाब प्रस्तुति दी गई, इसी दिन का आपके मित ये गीत भी अच्छा लगा, यादगार पेशकश के लिए बधाई। बुधवार को एक ही फिल्म से के अंतर्गत कारवा की कहानी सुनकर दिल झूम उठा, इसके लिए मनीष शर्मा जी की दिल की गहराइयों से बधाई दे रहे हैं, इसी दिन का आपके मित ये गीत भी अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग खंडवा, सुनहरे पल, सुगम संगीत, चेतना और सप्ताह भर के कार्यक्रम इन्होंने पसंद किए हैं। साथ ही सुनहरे पल, युवाणी, किसानवाणी, बाल जगत और फोन करे गीत सुने। हेलो फ्रेंड्स, सभी कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीत पेश किए गए, सभी कार्यक्रमों के लिए हमारी ओर से साधुवाद। एक निवेदन, एक ही फिल्म से के अंतर्गत ऋषि कपूर और नीतू सिंह अभिनीत फिल्म रफू चक्कर की कहानी और गीत सुनवाइए। ये लिखने वाले हैं बाजार फेल शेगांव महाराष्ट्र के मोहम्मद अनीस मुहा।

0: दानिश, जुनेल, रियाज और रिजवान।
1: बहुत बढ़िया। इस संपूर्ण परिवार को हम मतलब उनके इस पत्र के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको सप्ताह भर की प्रस्तुतियां पसंद आई हैं। आगे भी हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिएगा बंधु
0: जी। अगला पत्र लिखने वाले हैं कल्लनगंज खंडवा से कौसरबी पवार, हसीना पवार, सईद खोकर अलमास और सबीहा जहीर। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। सप्ताह भर के आपके मित ये गीत, सुनहरे पल, राग रंग, सुगम संगीत, युवाणी, हेलो फ्रेंड, किसानवाड़ी कार्यक्रम, सभी की प्रस्तुति लाजवाब और यादगार रहती है। उद्घोषक भाई और बहन बहुत ही मेहनत से ये प्रोग्राम पेश करते हैं, इसलिए सलाम कर रहे हैं सभी को। एक सुझाव, फिर वही किसी और फिल्म का सुझाव दिया, राजेश खन्ना तनुजा की फिल्म मेरे जीवन साथी की, अगर आप सुनवा देंगे तो मेहरबानी होगी।
1: बिल्कुल, हम देखिए आप सभी के इन सुझावों को सूचीबद्ध करते हैं, पर इनकी जो हमारे यहाँ की प्रस्तुतियां हैं उनकी उनका भी एक क्रम बना हुआ है, उसमें कहीं बीच पे शुमार हो सकती हैं तो जरूर करेंगे।
0: सुनहरे पत्र कार्यक्रम के अतिथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के समीक्षात्मक ईमेल पत्रों को यथासंभव शामिल कर श्रोताओं के सुझाव, शिकायत और प्रशंसाओं को कार्यक्रम में जगह दी, इसके लिए चिन्मय जी और प्रशांत जी को धन्यवाद। और आगे लिख रहे हैं, सोमवार को गुड मॉर्निंग खंडवा की प्रस्तुति अच्छी लगी, मंगलवार को सुगम संगीत अच्छा लगा, आपके मित ये गीत अच्छा लगा, लोकरंजनी अच्छा लगा, बुधवार को कारवा फिल्म की कहानी पसंद आई, सभी को धन्यवाद दे रहे हैं प्रस्तुतकर्ताओं को। ये लिखने वाले हैं ग्राम जामली कला खंडवा से माणकचंद राठौर, पुष्पा बाई, छेगांव देवी, खंडवा से अशोक वाघे, वंदना वाघे।
1: अरे वाह, धन्यवाद आपका इस ईमेल के लिए। हमें जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद आए हैं, और ये जानकर और अच्छा लगा कि आपने बहुत ही सटीक भाषा में बहुत छोटा सा अपना पत्र जो है वो हमें लिखकर भेजा, इससे हमें अन्य श्रोताओं को शामिल करने के लिए और समय मिला।
0: जी, निमार की सुनीली धड़का आकाशवाणी खंडवा के अतिथि महानुभाव को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। पिछले सप्ताह गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में पत्र और ईमेल के जरिए प्राप्त सुझाव, शिकायत और प्रशंसा के बड़े ही निराले अंदाज में जवाब दिए गए। दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई। इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम दिलो दिमाग पर छा गया। शनिवार का फोन करे गीत सुने लाजवाब रहा। सफल और सुंदर पेशकश के लिए बधाई दे रहे हैं। फिल्म कारवा की कहानी पसंद आई है, दिल से धन्यवाद मनीष जी को। गुड मॉर्निंग खंडवा पसंद आया है। नारी जगत, बाल जगत, युवाणी, यूथ चॉइस, हेलो फ्रेंड्स, किसानवाड़ी आदि सभी कार्यक्रम रोचक लगते हैं। सुबह की सभा में बहनों की पसंद पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत कार्यक्रम को ईमेल पर शुरू कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: अच्छा ठीक है, इस ये भी एक अच्छा सुझाव है, इसमें इसको देखते हैं हम कब इसको शामिल कर सकते हैं। सुझाव अच्छा है, धन्यवाद आपका।
0: ये लिखने वाले हैं दादाजी धुनी वाले मार्ग के हस्सू बाबा, मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल, जामा मस्जिद रोड भीकन गांव के सफिया, अरहान, खोकर और आयान।
1: अच्छा, इनका पहले भी अभी पत्र आया था क्या?
0: नहीं, ये नहीं थे।
1: ओके, आपके इस ईमेल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुझाव बहुत ही अच्छा दिया है, उसको हम देखते हैं कब तक इसको शामिल कर सकते हैं अपने कार्यक्रमों में।
0: जी, अब एक थोड़ा बड़ा सा ईमेल है, मैं ले रही हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, दिनांक 4 जुलाई को 7 बजे विशेष कार्यक्रम में श्रीमती श्वेता शाह की वार्ता सुनी। वार्ता का विषय था निमार के तीज त्योहार। वार्ता बहुत अच्छी लगी। हमारे निमार की लोक संस्कृति एवं तीज त्योहार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कौन सा त्योहार कब और कैसे मनाया जाता है, इस बारे में जानकारी सुनना अच्छा लगा। इसी क्रम में प्रातः 7:20 पर साप्ताहिक भेंट वार्ता के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय खंडवा की मनोरोग विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर निशा केतवास से जो बातचीत सुनवाई गई, ये अच्छी लगी। बच्चों में मोबाइल की लत, कारण, लक्षण और इससे बचने के उपाय, बहुत जरूरी और अच्छी वार्ता थी।
1: बहुत अच्छी वार्ता थी।
0: ये भी अच्छी लगी क्योंकि मेरा बेटा, छोटा बेटा है जिसकी उम्र 4.5 साल है, बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाता है। कैसे हम इस समस्या से निजात पाए, इस ओर ध्यान दिया गया, तो इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे लिख रहे हैं 7:30 बारिश के तेज फुहारों के बीच चाय पकौड़े की मस्ती के साथ सदाबहार गीतों का सुनना बहुत मजेदार हो गया। ऐसे ऐसे सदाबहार फिल्मी गीतों का चयन किया गया, बारिश का मौसम और भी सुहाना लगने लगा। इतने लाजवाब पेशकश के लिए विद्या सिंह चौहान जी को धन्यवाद दे रहे हैं। दिनांक 7 जुलाई का 7 बजे विशेष कार्यक्रम में श्रीमती जैन जी की वार्ता सुनी। वार्ता विश्व समा दिवस पर थी। वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा और हिम्मत का काम होता है, सबसे बड़ी ताकत होती है किसी को माफ कर देना। इतनी सफल एवं शानदार वार्ता हेतु प्रस्तुतकर्ता साथी को बधाई दे रहे हैं। 8 तारीख का प्रातः 7 बजे का विशेष कार्यक्रम सुश्री शिवानी कोचर से सुनी। इसमें वार्ता का विषय था सतत आर्थिक विकास और हमारा देश भारत। ये भी इनको अच्छा लगा है। इसमें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया था, इन सुनकर अच्छा लगा। लिखने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह।

0: पद्मा टॉकीज नेपानगर की।
1: बहुत बढ़िया, शाह दंपति को हमारी तरफ से इस विस्तृत और सारगर्भित ईमेल के लिए तहे दिल से शुक्रिया, आभार। हमें बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको प्रस्तुतियां पसंद आई हैं। हम ये भी सुनना चाहेंगे कि ये जो मोबाइल की लत छुड़ाने वाली जो वार्ता आपने सुनी थी, ये कितनी कारगर रही, ये भी हमें बताइए।
0: आपने क्या किया बच्चे के साथ? हाँ, आपको
1: तो उसको उसका जो असर हुआ वो भी हमें लिखकर बताइएगा।
0: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, ग्राम खेगांव तहसील महेश्वर से प्रेम लाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र, ममता बाई वर्मा। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
0: हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगे हैं, लगते हैं। दिनांक 8 जुलाई का नारी जगत कार्यक्रम अच्छा लगा। पौधों की देखभाल विषय पर बात जानकारी बहुत अच्छी लगी। साथ ही पनीर सैंडविच की रेसिपी और फिल्म के गीत सुनवाए गए अच्छे लगे। मीनू जी को बधाई दे रहे हैं।
1: क्या बात है, धन्यवाद आपका इस ईमेल के लिए
0: जी। सुनहरे पल चेतना कार्यक्रम में मनोरोग विशेषज्ञ निशा कैथवा से बातचीत सुनवाई गई, ये बड़ी प्रासंगिक लगी। रविवार को हमारे श्रोता कार्यक्रम में मालाकार जी से आरती शर्मा जी की बातचीत रोचकता वाली थी। गुड मॉर्निंग खंडवा में विद्या सिंह चौहान ने स्वच्छता अभियान और जानवर जनित रोगों के बारे में जानकारी बताई, ये अच्छी लगी है। 8 जुलाई का एक ही फिल्म से कहानी अच्छी लगी। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा के आनंद जोशी, तनुजा जोशी।
1: आनंद जोशी और तनुजा जोशी जी, आपको इस आपके ईमेल के लिए बहुत बहुत आभार
0: जी। अगला है थोड़ा अजीब सा है, मैं ले रही हूँ। श्रीमान उद्घोषक महोदय, आकाशवाणी केंद्र खंडवा, जय श्री कृष्ण। कार्यक्रम सुनहरे पत्र नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। डैश डैश डैश डैश डैश। सुबह की सभा के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे, ब्रैकेट में है मनोरंजक ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद, ब्रैकेट क्लोज, लगते हैं। पिछले हफ्ते हमारा सबसे प्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम सुनहरे पत्र सुना, खुशी के साथ दुख भी हुआ।
1: अच्छा,
0: कारण पूरा कार्यक्रम डैश डैश डैश अगेन रिपीट नसीहत नरम कपड़े,
1: नरम हाँ, कपड़े
0: पता नहीं केपीएस चौहान नाम लिखा है।
1: केपीएस चौहान जी, आपके इस ईमेल ने तो बहुत ही हमारा ध्यान आकर्षित किया। वो एक शेर है ना, गोलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते
0: अरे
1: हैं,
0: क्या बात है?
1: वैसी बात हो गई है, पर हम जानना चाहेंगे आपको क्या पसंद नहीं आया, मतलब हाँ। वैसे ये ईमेल पूरा नहीं आया है, इसके लिए हमें भी बहुत खेद हुआ, पर चलिए कोई बात नहीं।
0: मैं समझ ही नहीं आया कि अच्छा भी लगा, हाँ, खराब भी मतलब, लगा, दुख भी हुआ, सुख भी हुआ, क्या था?
1: शॉर्ट में हमें ईमेल लिखे हैं, अपनी भावनाओं से अवगत कराए, पर इतना शॉर्ट में भी नहीं कि वो शॉर्ट हैंड हो जाए।
0: ओके, है ना। तो अगला ईमेल जो है वो उन्होंने नाम नहीं लिखा है।
1: अच्छा
0: जी। 3 जुलाई का एक कहानी फिल्म शिवानी मोरी की कहानी पुनर्मिलन की चाह, इन्हें अच्छी लगी। 4 जुलाई को चेतना के अंतर्गत स्वास्थ्य भेंटवार्ता सुनाई, मोबाइल का उपयोग बच्चों के लिए कितना घातक, ये भी इन्हें अच्छा लगा। 7 जुलाई का विविधा के अंतर्गत वरिष्ठ साहित्यकार श्रीकांत साकल्य जी का काव्य पाठ मनमोहक लगा। 8 जुलाई का एक ही फिल्म से श्रेणी के अंतर्गत कारवा की कहानी और गीत सुनकर मजा आ गया, अनूठी पेशकश मनीष शर्मा जी की थी। मन की बात, जल का संरक्षण करे, जल है तो कल है, स्वच्छता ही सेवा है, नर्मदे हर जिंदगी भर, कवर कॉलोनी बड़वा।
1: कवर कॉलोनी बड़वा से लिखने वाले हैं कौन? अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं है
0: जी।
1: बंदूर अपना नाम तो लिखिए नाम तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
0: आदरणीय दोनों प्रस्तुतकर्ताओं जी को सादर नमस्कार। 2 जुलाई का सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुना, प्रशांत मालवीय जी, चिन्मय जी को सुनकर अच्छा लगा, शिक्षाप्रद जानकारी दी गई, कार्यक्रम शिवानी मोरी के अंतर्गत पुनर्मिलन की, इसके अंदर जो उनको कहानी अच्छी लगी है। अगली बात लिख रहे हैं, 3 जुलाई का सुनहरे पल कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है, राजकुमार जी को याद किया, उनके 4 दशक में 65 फिल्मों का सफरनामा कीर्ति गोखले जी ने हमें इस तरह से सुनाया कि सुनकर मजा आ गया। आगे लिख रहे हैं, पराग गोखले जी की प्रस्तुति भी अच्छी लगी है, और निमार के 30 त्योहार के बारे में श्वेता जी की जो जानकारी दी गई थी ये भी इन्हें अच्छी लगी है। चेतना कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। और मोबाइल की लत वाली बात, ये लेटर बहुत ज्यादा लंबा है और हमारे पास टाइम कम है, मैं इनका नाम पढ़ देती हूँ पहले। इन्हें चेतना कार्यक्रम भी अच्छा लगा है, ये लिखने वाले हैं खरगोन मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपीसी चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो आपने लगभग, मुझे ऐसा दिख रहा है, सप्ताह भर के सभी कार्यक्रमों की आपने का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की है। आपने बताया आपको क्या क्या पसंद आया, इस ईमेल के लिए आपका आभार बंधु
0: जी। अगला ईमेल लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर

0: अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र मूसा, शेख मूसा, सुदामा नगर खंडवा के लक्ष्मी नंदिनी ये लिख रहे हैं। राजकोट के बारे में जानकारी सुनने को मिला युवाणी कार्यक्रम में, अच्छा लगा। बुधवार की फिल्म अच्छी लगी और श्रीकांत साकल्ले जी की काव्य रचनाएं हमें बेहद पसंद आई।
1: क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको युवाणी की प्रस्तुति पसंद आई है
0: जी।
1: और इसके साथ ही मेरे ख्याल से आज हमारे पत्रों का सिलसिला यहीं समाप्त करने का समय हो चुका है। आप सभी से अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सुनहरे पत्र।

0: मैं हो चुका है। आप सभी से अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सुनहरे पत्र।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पत्र, ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात, कुछ ही समय में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई,

0: खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से

0: जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से PF खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार।

0: और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। अब पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनिए आशा भोसले को।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

समाप्त हुआ। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खंडवा है। सुबह के 8:30 होने वाले हैं प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। कुछ ही समय में हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था।

वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातना

अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशुदत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहां अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत्थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम

के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमनसिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ समय में राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस संदेश से ठीक पहले आपने सुना अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में बार बार देखो फिल्म का गीत। कुमार ने उसे लिखा था, अमाल मलिक का संगीत। और चित्रलोक में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और परहेज की, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमें परहेज लंबे समय तक करना पड़ता है और कभी कभी जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और ऐसे में कई बार ऐसा लगता है, बिल्कुल मन नहीं मानता और ये लगता है कि क्यों हम ये सारी चीज़ें नहीं खा रहे हैं या क्यों हमें ये सारी चीज़ें करना है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए परहेज की आवश्यकता है और कभी कभी वो इससे उकता जाते हों, तो डॉक्टर की सलाह लेकर आप उन्हें कभी कभी उनकी पसंद की चीज़ें सप्ताह में या महीने में एक बार दे सकते हैं। ऐसा कई बार डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा ही परेशानी की स्थिति ना हो तो वो ऐसा कहते हैं कि आप उन्हें इतनी क्वांटिटी में वो चीज़ें दे सकते हैं, तो उस ही मात्रा में ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। और जीवन यूं भी उन पर काफ़ी कड़ा है, तो आप थोड़ा नरमी रखिए उनके साथ, समझाइए मत उन्हें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप समझाने पर जाते हैं तो मामला ज़रा बिगड़ सकता है। उसकी बजाय उन्हें सुनिए उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बेहतर मदद साबित होती है। और अगर हो सके तो परिवार के दूसरे सदस्य भी परहेज में सहयोग करें, लेकिन कुछ ऐसा परहेज हो जिससे दूसरे परिवार के सदस्यों को करने से उन्हें स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं तो ना करें। पर जो भी परहेज उनके साथ आप कर रहे हैं उसे एहसान की तरह मत दिखाएं। तो जितनी सहजता से ये बातें होंगी उतनी ही आसानी भी होगी।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत आपने सुना और इरशाद कामिल ने से लिखा, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में बात हो रही स्वास्थ्य और परहेज की। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें परहेज की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको परहेज करना आवश्यक हो गया हो तो इसे मन पर हावी मत होने दें, क्योंकि कई बार लोगों की बातों का केंद्र बिंदु ही ये बात बन जाती है कि ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उन चीज़ों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं जो आप कर सकते हैं या जो आप खा सकते हैं, जो चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये बात तो उस ज्ञान की तरह लगेगी जो कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन काम तो यही आता है। तो एक और ज्ञान हम देते चलें कि भाई मन के अनुसार आप मत चलिए, मन को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि मन आपका है, आप मन के नहीं हैं। तो ये कीजिए और देखिएगा फिर आपका मन कितना खुश रहता है।

बैंग बैंग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अर्शदीप कौर और बेनी दयाल की आवाजें, अनविता दत्त के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और हमारा स्वास्थ्य भी कुछ इस तरह से थोड़ी सी कहते परहेज मांगता है या थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहता है ताकि हम उसी ओर जाएं और अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे। और इस परहेज को छोड़ने की जब बातें हम करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हमें आज कुछ भी नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, तो वो चीज़ें जो हैं बाद में जाकर परेशान तो करती ही हैं। तो क्यों ना खुशी खुशी कीजिए भाई, परहेज तो करना ही है, तो रोकर कीजिए या हंसकर कीजिए, तो बेहतर है कि भाई अच्छे स्वास्थ्य की ओर अपना अच्छा कदम बढ़ाइए और हंसते खिलखिलाते बढ़ते हुए चलिए। तो आज ही कीजिए शुभारंभ इस बात का।

काई पोचे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रुति पाठक, दिव्य कुमार की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और इतनी देर हमने बातें की अच्छे स्वास्थ्य और उसके लिए किए जाने वाले परहेज की, तो यकीन मानिए आपका और हमारा हाल एक ही है, पर एक दूसरे को इस तरह संभालते हुए आप और हम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते जाएंगे। और गीतों का साथ तो है ही, तो आज जो भी आज से अपने अच्छे स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, आप सभी के लिए कार्यक्रम का ये गीत, क्योंकि आपकी तरह ही हम भी अच्छे स्वास्थ्य के फैन हैं।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म का गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, दिन भर जहां भी रहें रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। और आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: किसी इंसान से कोई शिकायत? मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।

0: तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियाँ दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।
2: भंवरा बड़ा नादान है, बगियन

गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे। एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ, वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थी कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थीं और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए, जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं।

0: तमीज से बात करो।
1: आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
0: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और ना ही मैं तुम्हारे सुख को बदला लेना चाहता हूँ।
1: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
0: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
1: कोई नहीं।
0: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
1: मुझसे कहे कि इतनी हमदर्दी समझा?
0: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।
2: हाँ

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया, वैसे ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा, तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

0: गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया। 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक है में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: इधर आ, छोड़ता नहीं इधर आ, अपने दो रुपये, अरे तुम्हें अपनी चिंदिया, अभी देखता क्या है, चल उठा खा जल्दी कर, पकड़ अपना कोट, वो रहा दरवाजा और सीधा निकल जा, ठहर जा, अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहां देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं, जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और हमें तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है तुझमें और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं और कल जब यही वक्त पलटेगा।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना, चल दफा हो यहां से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। चौदहवीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: याद हो।
1: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
2: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो

सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है आपको, डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे, तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या का किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज़ के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज़ है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश, जंपेरिया।

फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।

0: कि मैं घबरा के पी गया इस दिल की बेबसी पे, तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था
1: अच्छा?
0: मुझको।
1: तो ये शायर भी हैं?
2: शायर?
0: बड़ी
2: अरे तू देखती नहीं उसकी कुछ पांच से नज़मे उसके सर के पीछे पड़ी हैं।
0: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां।

0: फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।
1: यहां

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी खंडवा है, सुबह के 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी, अब हम आकाशवाणी भोपाल से

0: अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिला इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल गांव-गांव और वार्ड वार्ड तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और

दतिया जिला इन दिनों राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरे जिले में जोर शोर से चल रही हैं। राजनीतिक दल गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक पहुंचकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, फ्लैग मार्च, मतदान केंद्रों की तैयारियों और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल पुराने बैंक एफडी घोटाले के मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सदस्यता रद्द होने से उपचुनाव कराना जरूरी हुआ। उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी की गई। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। नामांकन जांच 14 जुलाई तक और नाम वापसी 16 जुलाई तक की जा सकती है। मतदान 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही नतीजे की घोषणा हो सकती है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं बारिश की खबर का। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही दतिया जिले के किसान खरीफ सीजन की खेती में जुट गए हैं। जिले में धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और तिल की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों की सलाह दे रहा है। समय पर बारिश से किसानों के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि वे अच्छी बारिश के सिलसिले के बने रहने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दतिया जिले में 1 जून से अब तक कुल 494 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 264 मिलीमीटर कम है। दतिया जिला प्रशासन उपचुनाव की तैयारियों के साथ साथ अलग अलग विभागों के माध्यम से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी जुटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, विद्यालयों की व्यवस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। बीते मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक श्री मयूर खंडेलवाल ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के सामने एक चौराहे से होते हुए गंज, राजगढ़ मार्ग, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर और तिगैलिया होते हुए प्रमुख मार्गों एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी दतिया की पहचान लगातार मजबूत हो रही है। विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जिले में सामाजिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। पौधरोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम, युवा गतिविधियां तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के जागरूकता अभियान लोगों तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिला पुरातत्व, पर्यटन तथा संस्कृति परिषद दतिया एवं स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जिले के समस्त शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों द्वारा अपनी टीम का पंजीयन कराया जा सकेगा तथा इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पंजीयन के लिए 25 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। प्रतियोगिता 7 अगस्त 2026 से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दतिया के नागरिकों की अपेक्षाएं आज भी विकास, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्बाध बिजली, पर्याप्त पेयजल और सुरक्षित वातावरण को लेकर बनी हुई हैं। उपचुनाव के इस दौर में मतदाता केवल राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर विकास के ठोस कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी, लेकिन इसके साथ साथ खेती, विकास कार्य, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक कार्यक्रम भी जिले की प्रगति की दिशा तय करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस लोकतांत्रिक उत्सव के साथ विकास की गति भी निरंतर आगे बढ़ेगी और दतिया नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर होगा। दतिया जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त फिरदोस। सभी को सलाम, नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे दतिया जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं।

चंद्राणी मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में ये गीत अभी आपने सुना जुल्म की पुकार फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी। पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, समप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, आलोकिक चंसोलिया। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीव राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। जामली कला से मणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर। जिला खंडवा से अशोक वाघे, वंदना वाघे और कान्हा वाघे। कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी अलमास और सबीना जहीर पवार। अहमदपुर खेगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, सुभाष खंडाले, दीपक फूलमाली और समर फूलमाली। ग्राम जामली कला से शब्बीर मंसूरी, साबिर फैजल, सोहेल शहबाज और सिफान मंसूरी। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल जगह नहीं लिखी है। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई भारती, खंडवा से मोहम्मद हसनैन, हस्सू मोइन, छोटू मोहम्मद फाजिल। बिकन गांव से सफिया अरहान, अनस शिफा। गुजरात गांधीग्राम से जगदीश जोहरी, पूजा पायल, प्रवीण सोनी। दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार।

फिल्म है खिलाड़ी। ये संगीत जतिन ललित का है, शब्दकार हैं देव कोहली और आवाज़ कुमार सानू और आशा भोसले की।

इस गीत को सुनना चाहा आप सभी श्रोताओं ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मैं रहा जहां। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम। जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश कुमार, सरवद, प्रणाली सानवी, कल्पना देशमुख। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, कुमकुम और गुड़िया। राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर योगेश, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा निवादा, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा। मटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल। बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। आकोर से विनायल बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम, बेंडे पवन जरिए के संजीव डाबेराव। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल, बेबी जोई और रिंकी गोस्वामी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
4: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
3: आप कब आ रहे हैं?
4: आकाश

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में ये गीत अभी आपने सुना आंधी फिल्म से। इसे लिखा था गुलजार ने और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने। कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार। दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। दहींगांव नांदूरा, ढोंडू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार।

0: भारती, प्रतीक्षा, कोमल, समाधान, भातुरकर, पंजाब से प्रेम सिंह, जोड़ा मनजीत कौर, जोड़ा करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिंपू, एकम, दमन, अभिजोत, चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी और लवली, मारहरा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है, ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है, इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है, उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं साहब, बीबी और गुलाम फिल्म में आशा भोसले को। गीतकार शकील बदायूनी है और हेमंत कुमार ने संगीत दिया है। गाना सुनना चाहते हैं आप सभी, सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खां, सबिहा अंजुम खां, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी शांदी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार और मनीष पवार, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, गांव पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा, मीणा, अश्विनी और विपुल कांबड़े, झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत, महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाड़कर, सरिता गवहाड़कर, प्रणीता सिद्धांत, अर्जुन गवहाड़कर और एकांश गवहाड़कर। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। इसी गीत को कुछ और श्रोताओं ने भी सुनना चाहा। उनके नाम हैं उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय चौहान, पुटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू, ढुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम, अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस खत्री और नूर मीना, गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। आप सभी की पसंद पर आज हमने आपको गाने सुनवाए। इसी के साथ आपकी पसंद का आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी रेडियो दोस्त फिरदौस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। सुबह के 10:40 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए निमाड़ी लोकगीत। निमाड़ी लोकगीत में आज के कलाकार हैं कड़वाजी पटेल और साथी।

0: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: और आकाशवाणी खंडवा से इस वक्त आप सुन रहे हैं निमाड़ी लोकगीत। आज के हमारे कलाकार हैं कड़वाजी पटेल और साथी।

निमाड़ी लोक संगीत के आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कड़वाजी पटेल और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजने वाले हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

बेगम अख्तर की गाई गजल हम चंद लम्हों के बाद सुनवाएंगे। पहले पेश खिदमत है गुलाम अली की आवाज में यह गजल। कलाम है नासिर काज़मी का।

नासिर काजमी का कलाम था, गुलाम अली की आवाज़ थी, ये थी एक गज़ल। लीजिए अब पेश है पंकज उधास की गाई गज़ल, कलाम है राजेश रेड्डी का, मौसिकी पंकज उधास की, एल्बम का नाम है नबील।

0: या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वर्षा ऋतु एल्बम से आप सुन रहे थे तलत महमूद का गाया ये गीत। रचना थी मुरली मनोहर स्वरूप की, संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है तलत अजीज की आवाज में ये गजल। कलाम है कतील शिफाई का, मौसिकी तलत अजीज की।

0: तलत अजीज की गाई ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था कतील शिफाई का, मौसिकी तलत अजीज की थी। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र के स्वर में ये गीत, रचना गुलजार की, संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: आसमान का रंग बदल रहा था, रात कच्ची पड़ रही थी।
0: ये स्वर गुलजार का है।
1: पास के पेड़ से उड़ा और सुबह को लाने आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा, चल।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जुल्फे गिरहगीर तो देखो, दिल क्यों ना गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो, फिर शौक से कह लेना दीवाना मुझे लोगों, पहले मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो।
1: तुम मेरी जुल्फे गिरहगीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो? तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो?
0: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान हो गई।

0: क्या बात है,
1: बिल्कुल

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा

हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूँ।

मोहब्बत का दस्तूर है, हुस्न की हर अदा हमको मंजूर है। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा के कल आएंगे चराग जले, और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जिक

0: के भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं, बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं। और ये हुस्न वाले जब भी लेते हैं अंगड़ाई, तो खुदा वाले भी बरसों की इबादत छोड़ देते हैं।
1: क्या बात है,
0: याद आ जाऊ तो भूल जाया करो, अपने पलकों के मोती छुपाया करो, आंसुओं से तो सब राज खुल जाएंगे और खयानत मोहब्बत में हो जाएगी। मेरे महबूब तुम हो अमान।

0: नजर झुकाओ हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में, अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमा ने आग रखी सर पे कसम खाने को, बाखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को, सरे बाजार मेरे हुस्न का चर्चा ना करो, प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा ना करो, चांद ऊंचा।
1: डाकू हसीना फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे दिलावर बाबू और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ आज का रंग तिरंगे प्रोग्राम ख़त्म होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।

0: सकते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के

0: व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया, जो समानांतर यात्राओं से एकीकृत भविष्य के लिए तैयार साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र, बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता की थी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एबीवीपी के सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.7% की बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 561 अंक बढ़कर 77,065 पर और निफ्टी 179 अंक की बढ़ोतरी के साथ 24,061 पर था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मौसम फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आपकी कसम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 विविध भारती पर
0: यह है कार्यक्रम यादों की महफिल।

खिलौना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आज है जाने माने अभिनेता संजीव कुमार का जन्मदिन। अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल मदन मोहन का संगीत, आवाज़ मदन मोहन की।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाजों में ये गाना फिल्म पति पत्नी और वो।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: करती है,
1: जी
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। शब्दकार थे गुलजार, संगीतकार कनु रॉय। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो भाई, जो लोग, जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं उपस्थित, तो उन्हें तो आज की इबारत की जानकारी हो ही गई होगी, लेकिन जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए हम बता देते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत लिखते हैं और उसमें जो शब्द होते हैं उन शब्दों से गीत हम श्रोताओं से कहते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ पहेलियाँ होती हैं, गाने होते हैं, कुछ गाने श्रोताओं की पसंद की भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो हम आज की इबारत जरा आपको पढ़कर सुना देते हैं। आंखें मन की खूबसूरत इबारत है, इनमें नींद और ख्वाबों का अनंत आसमान भी, यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नज़र ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है, और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में

अनंत आसमान भी यहीं सपने जन्म लेते हैं और उम्मीदों के रंग आकार पाते हैं। कभी ये खामोश रहकर भी दिल की हर बात कह देती हैं आंखें, तो कभी एक नज़र ही पूरी कहानी लिख देती है। आंखों में इश्क का पहला एहसास प्यार की रोशनी ठहरती है और कभी कोई चुपके से दिल भी चुरा लेता है। आंखों की चमक में हंसी खिलती है, खुशी झलकती है और बिछड़ने का दर्द आंसुओं में ढल जाता है। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनमें यादों की महकती खुशबू होती है। आंखें सचमुच मन का आईना है, इनमें नींद भी है, ख्वाब भी, सपने भी, बातें भी, हंसी भी, शब्द भी, खामोशियां भी, और सबसे बढ़कर इनमें वो जादू है जो बिना कुछ कहे किसी का दिल चुरा लेने की ताकत रखता है। किसी की आंखें देख चौदहवीं का चांद याद आता है, और अभी ये भी धुन सुनी थी आपने इसी गाने की। तो बताइए आपकी आंखों में पहला ख्वाब कौन सा चमका था? रात भर किसी के लिए जाकर उसकी फिक्र कब की, किस सन में, किस साल, कौन सा ऐसा लम्हा था किसी के लिए आप जागते रहे? अपने बच्चे के लिए सभी माँ जागती है, सभी पिता जागते हैं। कभी जब बच्चा रोता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, या यूं ही बच्चे को थपकी देते हुए, ऐसे बहुत सारे लम्हात होते हैं जब आप जागते हैं किसी के लिए। कभी आपके नयन किसी से डर जाते हैं, क्या आप किसी की आँख की रोशनी बनना चाहते हैं? तो हमें ज़रा बताइए, फिलहाल बताइए कि वो कौन से शब्द हैं जिनसे आप गाने चुन सकते हैं। तो गानों की फहरिस्त आप ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके गाने और हमारे गाने एक हो जाएं, तो हम वही गाना सुनवाएंगे। और दोस्तों, आंखों में नींद होती है, ख्वाब होते हैं। कई बार जब हम जागरण करते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, कुछ लिख डालते हैं। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? आँखों से दुनिया देखी जाती है। हम इंसान को परखने का काम भी आँखों से ही करते हैं, और आँखों से पढ़ाई लिखाई करके अपनी एक विचारधारा गढ़ते हैं। आपने क्या किया है बताइए, आप अपने अनुभव साझा करते रहिए। और हाँ, अगर जब इस संसार से विदा के बाद अपनी आँखें अगर किसी को दान कर दें तो किसी की आँख की रोशनी बन सकती है। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है तो वो भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चलिए अब शुरू करते हैं सिलसिला कार्यक्रम का। सबसे पहले प्यासा फिल्म का गाना हम सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देवबर्मन का संगीत। बताइए कौन है हीरो हीरोइन?

गुरुदत्त का जन्मदिन है, संजीव कुमार का भी जन्मदिन है। संजीव कुमार के बहुत सारे गाने हमने यादों के महफिल कार्यक्रम में सुनाए हैं, लेकिन गुरुदत्त के नाम ये गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज उन्हें हमें याद करना चाहिए, लेकिन आज जो जो गाने हमने चुने हैं वो आँखों से जुड़े, लेकिन आज की इबारत में जो शब्द हैं उन शब्दों से आपको गाने चुनने हैं, तो ज़रा गाने चुनकर हमें बताते चलिएगा। फिलहाल हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी की आँखों को पढ़ना भी एक कला है, क्योंकि शब्द भले ही धोखा दे जाएं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। खुशी से भरी आंखों में एक चमक सी होती है, उदास आंखों में नमी कुछ भारीपन होता है, मानो बिना बहे आंसुओं का बोझ उठा रही हो। कभी ये इशारों में बात करती हैं, लेकिन रहस्यमयी होती हैं वे आंखें जो शून्य में खोई रहती हैं। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कब कैसे किसी की आंखों की परिभाषा आपने समझ ली और कब कैसे किसी की आंखों के नूर बन गए। और ये कहा जाता है ना कि अरे वो तो मेरी आंखों का तारा है, ख़ास तौर से अपनी संतान के लिए। तो आप बताइए, आपकी आंखों का तारा कौन है, आपका बेटा या बेटी या दोनों? और आप किसकी आंखों के तारा हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र? बताते चलिए। फिलहाल सी आई डी

0: तो
1: प्यासा फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारा सवाल ये था कि कौन है हीरो हीरोइन। गुरुदत्त और माला सिन्हा, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे दिया और आज

जरा हीरो और हीरोइन का नाम बता दीजिएगा। गीतकार का नाम पता है तो वो भी बता सकते हैं आप।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। जानिसार अख्तर के बोलते हमने पूछा भी था आपसे सवाल, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है, कुछ श्रोताओं ने सही लिखा है। संगीतकार थे ओपी नैयर, फिल्म सीआईडी और देव आनंद शकीला। हमने ये भी आपसे सवाल पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है कि घर से किसी प्रियजन का बिछड़ना या अचानक गुमशुदा हो जाना रात भर जागने को विवश कर देता है, हर एक पल उसकी चिंता बनी रहती है, रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाता है, मन हर पल बेचैन रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत आज की इबारत है, आंखें दिल का आईना होती हैं, जो बात हम जबान से नहीं कह पाते वो बातें आंखें पलक झपकते ही कह देती हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ ऐसे बेमिसाल अदाकार हो चुके हैं जिनकी आंखें बोलती हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, गहरा दर्द हो, या फिर बिना कुछ कहे जताया गया प्यार हो। दिलीप साहब, गुरुदत्त जी, अमित जी, मधुबाला, मीना कुमारी ऐसे कलाकार थे जो उपरोक्त कही गई भावनाएं बिना कुछ बोले ही अपने आंखों से बयां कर देते हैं। वैसे आम जिंदगी में भी लोगों की, कुछ लोगों की आंखें बोलती हैं, कुछ लोग जो झूठ बोलने के आदी होते हैं उनकी आंखें उनकी बातें छुपा लेती हैं। तो अपनी आंखों को पारदर्शी बनाए रखिए। फिलहाल सुनिए अनारकली फिल्म का ये गाना। अब जरा बताइए कि इसे लिखा किसने है, यानी गीतकार का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और फिल्म थी अनारकली। और हमने आपसे पूछा था कि आप बेटी और बेटों में से कौन आपकी आंखों का तारा है, तो कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि बेटों से ज़्यादा बेटी आंखों का तारा होती हैं। क्या बात है भाई। और हमने आपसे ये भी अब पूछा

है कि किसके लिए आप रात भर जागे। बताइए, क्या आपके लिए कोई रात भर जागता है? कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी संतान कहीं बाहर है, पढ़ाई के लिए गई है, नौकरी पेशे के लिए, तो आपकी आंखों में नींद नहीं है, चिंता में कुछ। जब ख़ास तौर से ऐसे मौसम बदलते हैं, बारिश तेज़ होती है, तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे इतनी बरसात हो रही, पता नहीं है हमारी संतान किस हाल में होगी। अब तो फ़ोन एक माध्यम है जब आप फ़ोन करके हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार रात को नींद उछट जाती है, आप चिंता में खो जाते हैं। कई बार बिन बात भी, बिना किसी कारण आप जागने लगते हैं। तो ऐसी जागरण वाली बातें आप बताइए, किन बातों पर आपकी नींद टूट जाती है और आप जागरण करते हैं, जागते हैं? एक श्रोता ने लिखा है, दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालात बदल बदल गई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखें हर आत्मा की खिड़की होती हैं, जो हर नज़रिए से एक कहानी बयां करती हैं। दुख में ये आंखें रिसती हैं और गुस्से में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन हमें ये झूठ भी बोल सकती हैं क्योंकि ये धोखेबाज भी होती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे खूबसूरत देन है आंखें इंसान के लिए, वो आंखें जिससे हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इन आंखों की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये अपनी खुशी दुख सबसे पहले व्यक्त करती हैं। इंसान शब्दों से तो बाद में बताता है, पर उससे पहले ये आंखें बयां कर देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मी दुनिया में दो अभिनेताओं के नाम लेना चाहूंगा, दिलीप कुमार प्राण। अभिनय में ये हाथों या शरीर से जितना अभिनय नहीं करते थे, उतना सिर्फ आंखों से अभिनय करते थे। कई बार निर्देशक और कैमरामैन सिर्फ इनके चेहरे का क्लोजअप लेते थे और पूरा सीन सिर्फ इनकी आंखें बयां कर देती थीं। चलिए अब फिर एक जागने वाला गाना है, तो फिर मेरा सवाल यही है कि बताइए आप किसके लिए कभी जागे, आपके लिए कौन जागरण किया रात भर? फिल्म बहू रानी, गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

बहुरानी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत। हमारे श्रोताओं ने ये सही जवाब हमें दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंख की दुनिया संवेदना की दुनिया है, सुंदर मधुर जीवंत संवेदना जो हमारे मन प्राण में बसती है, अक्सर वो आंखों के रास्ते बह निकलती है, सुख या दुख आंखें बरबस छलक जाती हैं, ये संवेदना ही लय बनकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है और गीत बनकर मुखरित होती है। तभी तो शैलेंद्र जी लिखते हैं, जाने कैसे सपनों में खो गई आँखियाँ और गुलजार तो दो कदम आगे बढ़कर आँखों में महकती खुशबू बसा लेते हैं। रचनात्मक लोग जिंदगी में डूबकर आँखों से भावनाओं का सच बयां करते हैं। आँखें दिल का आईना है और हमारी सच्ची साथी भी सुख या दुख कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे साथ ही हंसती हैं। और हमने आपसे पूछा था जब बहुरानी फिल्म का गाना सुनवाया कि आप किसके लिए जागे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी माँ का ब्रेन हैमरेज हुआ था और हॉस्पिटल गई थी, तो हम पूरी रात जागे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो शब्द हैं, आँखें सपने रोशनी चमक आईना जादू चांद नयन हो सकते हैं। भाई गाने भी तो सुझाते चलिए कौन से गाने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये आंखें हैं जो भरी सभा में भी बहुत सारी हरकतें कर जाती हैं, बोलती हैं, नाराज़ होती हैं, रीझती हैं, खिन्न होती हैं और शर्माती भी हैं, ख़ास तौर से जब आप इश्क में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो आंखों आंखों में बातें हो जाती हैं और दो लोगों के बीच जो बातें होती हैं तीसरे को पता भी नहीं चलती हैं। लेकिन हाँ, जब इश्क मोहब्बत में आ पड़ते हैं तो नींद भी गायब हो जाती है। तो बताइए कि क्या कभी आपकी नींद गायब हुई है किसी के लिए? सुनिए ये गाना और हमें बताइए कि इसमें कौन है हीरो हीरोइन। साथ में ये भी बताइए कि कब किसके लिए आपकी नींद टूटी और आपके लिए किसकी नींद टूटी, और नींद वाले कौन से गाने आपके जहन में इस समय कौंध रहे हैं।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गाना हेमंत कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी और हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया सुनील दत्त शकीला और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं और हमें ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हम जो सवाल पूछ रहे हैं त्वरित जवाब आप दे रहे हैं साथ साथ, ये नहीं कि पहले से टिप्पणी पोस्ट कर दी है, तो ये तब हमें और अच्छा लगता है कि जब आप लगातार शामिल रहते हैं इस कार्यक्रम में। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आँखों की बातें यादों की बात चल रही है, जब मैं आर्मी की भर्ती दी थी तब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, उस दिन रात भर मुझे बेचैनी थी, सुबह 6 बजे रिजल्ट देखा तो उस दिन खूब रोया था और आंसू आँखों में होते हैं। तो हमने आपसे पूछा था कि कब आप जागे थे, कौन सा वो दिन था, किसी के लिए या कोई लम्हा, तो इसके जवाब में हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे लिए रात रात को मेरी माँ जागती थी, जब पढ़ाई कर रहे थे तब भी और जब बीमार होते थे तब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि गिटार के साथ बढ़िया ग्रुप वायलिन बहुरानी फिल्म में सजन तुम सो जाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मम्मी हम सभी भाई बहनों के लिए जागती थी और अब हमें पता चला कि मम्मी पापा हम सभी के साथ कितना किया, जब मेरा बेटा हैदराबाद गया तब आंखों में आंसू आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो नई बहू आई तो बहुत देर तक जागते रहे, गर्मियों के दिन छोटी रातें, ऐसे में पत्नी हमारी बहन के साथ गप्पे मार रही थी, इसके बाद माँ के पैर दबाने लगी, किससे कहानी में रात 2 बज गए, गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन संस्कार ऐसे कि हमारे घरों में है कि पाँव के पायल की आवाज़ भी न मालूम पड़े। खैर, एक श्रोता ने लिखा है कि एक रात मेरी तबीयत खराब थी, उल्टियां हो रही थी, तब मेरी बेटी सारी रात मेरे पास बैठकर जागती रही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम बच्चों के लिए तो कई बार जगे रात भर और कई बार तो बच्चे पढ़ने जाते थे तो रात भर जागकर उनके ले जाने के लिए खाना बनाया ताकि वो ट्रेन और वहां जाकर घर का खाना खा सकें, और कभी किसी के इंतज़ार में भी जगे और इसलिए भी सुबह जल्दी ट्रेन है तो कहीं छूट न जाए, बेटी परेशान न हो जाए। जब कोई आने वाला होता था तो पूरी पूरी रात इंतज़ार किया जाता था कि सुबह 6 बजे या 4 बजे ट्रेन आएगी, नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी 12 गीतों की लिखी इबारत में से चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत शामिल हो गया, क्या बात है। ऐसे बहुत सारे श्रोताओं के गाने शामिल हो रहे हैं और अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं इसके लिए भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आँखों की महकती खुशबू गुलजार साहब महसूस करते हैं, तो सुनिए ये गाना और जरा बताइए कौन है इसमें हीरो हीरोइन। फिल्म घर, संगीतकार राहुल देवर्मन, गीतकार गुलजार, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

घर फिल्म का गाना था, हमने आपसे सवाल पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, सभी श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, रेखा और विनोद मेहरा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये तुम्हारी झील सी गहरी आंखें बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती हैं, खो जाते हैं हम इन नशीली आंखों में ऐसे जैसे कोई कश्ती समंदर में उतर जाती है। किन आंखों से आपको डर लगता है ये ज़रा बताइएगा, माँ पिता टीचर पत्नी पति या किसी दोस्त से, मतलब आंखें देखकर डर जाते हैं। माँ की आंखों में अगर क्रोध दिखाई दे जाए तो बस सब काम बड़ी जल्दी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा, जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली ममता निछावर करने वाली माँ ही होती है, तब भी माँ की आंखों में अगर ज़रा भी नाराज़गी दिख जाए तो बस सब कुछ मामला जैसे उलट जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से हमें कविवर बिहारी याद आ रहे हैं जिन्होंने नयन के बारे में लिखा है, कहत नटत रीझत खीझत मन ही मन लजियात भरे भौन में करत है नयनन ही सो बात, और ये आंखें दिल की जुबा है, और भी कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अभिनेता निर्माता निर्देशक गुरुदत्त और हरफन मौला अदाकार अभिनेता संजीव कुमार दोनों का जन्मदिन है, उनको याद करके आज का सुरीला सफ़र कैसे पूरा करें। भाई उन्हें याद किया, गुरुदत्त को हमने इस कार्यक्रम में याद किया, संजीव कुमार जी को यादों की महफिल कार्यक्रम में, फिर भी इबारत की ओर आँखें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, इन आँखों के इशारे पर कई शायरों ने गीत लिखे हैं और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। दरअसल आँखें ऐसी हैं कि आँखों पर अनगिनत गीत हैं, अनगिनत गाने हैं, और हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं अनगिनत गाने। लेकिन अब हम नयन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि नयन में डर कैसा होता है। आप अपने अनुभव बताइएगा कि किन नयनों से आपको डर लगता है।

कोरा फिल्म का ये गाना था, हेमंत कुमार की आवाज़ थी। कैफी आज़मी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था और गीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आँखों की बात चली है तो मैंने बहुत सी पुरानी फिल्में देखी हैं और हर फिल्म में अभिनेत्री अधिकतर आँखों से ही एक्टिंग किया करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हेमंत कुमार की मखमली आवाज़ थी, कैफी आज़मी के गहरे बोल रहस्यमय संगीत का एक बेहतरीन मिश्रण है। और ये सिर्फ फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत और शायरी का एक ऐसा दस्तावेज़ है जो हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपका ये आंखों पर लिखा गया लेख सबकी आंखों को परखने का काम भी करेगा। इनमें किसी के सपने, किसी की खुशियां, किसी का अपनापन तो किसी की नाराज़गी और भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है। पर क्या आप किसी के दर्द को पढ़ पाएंगी? वैसे तो आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं पर छुपाती भी बहुत कुछ हैं, और कभी कभी खुशी में भी छलक जाती हैं आंखें। इन्हीं आंखों से आंसू और कभी आंसू बहाकर दिल को हल्का भी कर लेते हैं इन आंखों में निकलने वाले आंसू। बात आंसू की चली है तो चलिए अब एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। जरा आप बूझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। किन मौकों पर आपकी आंखों में आंसू आए? हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब इंसान की आंखों में आंसू होते हैं, कभी खुशी का, कभी दुख का। संगीतकार का नाम भी जरा बूझिए।

हंसते जख्म फिल्म का गाना था, हमने पूछा था फिल्म का नाम, सभी ने बताया श्रोताओं ने सही जवाब, और गीतकार का नाम पूछा था कैफी आजमी, वो भी सही बताया, संगीतकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झलक दूर से मेरी आँखों ने देखी और मैंने ठान ली कि मेरी जीवन संगिनी तो यही होगी, 100% हमारी अरेंज मैरिज थी और रिश्ते होने पर सगाई में 18 महीने का अंतर था, मतलब आंखों से इन्होंने इनका रिश्ता तय हुआ। और एक श्रोता ने लिखा है कि बालपन में मुझे भूरी आंखों से डर लगता था, वो डरावने लगते थे लोग, माँ पापा ने समझाया तो डर गया। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ने बचपन में हम भाई बहनों को डांटा या मारा नहीं, हम लोग तो बस उनकी आँखों से डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अपनी मम्मी की आँखों से डर लगता था, ज़रा सा गुस्से में देखती थी और मैं एकदम रोने लगती थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरी एक महिला मित्र है जिनकी आँखों से मैं डरता हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, दोस्तों से बिल्कुल नहीं, एक अपने फिजिक्स के टीचर की आंखों से बहुत डरते थे हम, और इसके अलावा अपनी जेठानी की आंखों से भी। क्या बात है, टीचर की आंखों से तो बहुत लोग डरे होंगे, बताएं या ना बताएं, लेकिन कई बार जब होमवर्क नहीं पूरा होता तब टीचर की आंखों से बहुत डर लगता है। तो आप क्या कभी डरे टीचर की आंखों से, बता दीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि

जब शब्द थक जाते हैं और भावनाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वे भाषा के बंधनों में नहीं समा पाती, तब आंखें ही संवाद का माध्यम बनती हैं। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि वे आत्मा की खुला झरोखा हैं, जहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। एक तरफ जहां 14वें के चांद जैसी शीतलता मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी तरफ विरह के आंसू दुख देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आंखों की खामोशी और उनकी गुफ्तगू के जादू को बेहद नज़ाकत से बयां करने वाला एक खूबसूरत दस्तावेज है। ये लेखन केवल आंखों की तारीफ नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर छिपे भावनाओं के समंदर को शब्दों का रूप देता है। लेखक ने खूबसूरती से आंखों के विरोधाभासों और उनकी गहराई को समेटा है। दोस्तों, आँखों में सपने भी होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। कई बार कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। आप बताइए, आपका कौन सा सपना हुआ पूरा और कौन सा रह गया अधूरा? फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। गुलजार के बोल खयाम का संगीत था और श्रोताओं ने जानकारी दी है शबाना आजमी, राजेश खन्ना पर्दे पर। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि गानों के बोल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पसंद के बहुत सारे गाने आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आंखों में न रुकने वाले आंसू आए मेरी आंखों में जब 31 जुलाई को रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत प्यारा गीत है, बहुत बार सुनते हैं हम ये गीत, हमारी आंखों में आंसू बहुत बार आ जाते थे पहले, हम कभी किसी का दर्द नहीं देख पाते थे, पर अब धीरे धीरे आंसू छुपाना आ गया है। हम हंसते भी बहुत हैं और शायद आंसुओं से भी गहरा रिश्ता है। जब बेटी विदा हुई तब तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर जब हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ा फिर पापा तो बहुत आंसू बहाए, पर आंसू बहाने पर भी जाने वाला लौट कर तो नहीं आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी का के बोल बहुत अच्छा लगा, मर्म स्पर्शी गाना है और ये गीत सिखाता है कि जब शब्द संगीत और आवाज़ का सही तालमेल हो तो एक कालजयी रचना का जन्म होता है। आज भी जब लोग अकेलेपन या पुराने दिनों को याद करते हैं तो ये गीत सुनते हैं। फिल्म हंसते जख्म का और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, संक्षेप में हमने इनकी टिप्पणी आप तक पहुँचाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मम्मी की आंखों से हम कभी नहीं डरे क्योंकि इकलौता बेटा था, वे हमेशा प्यार से पेश आती रहीं। हाँ, पिता की आंखों से हम डरते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत साहित्य शायरी में सबसे चर्चित जिस्मानी आंखों के विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, गाने की झलक, फिल्म ऊँचे लोग, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीतकार और संगीतकार का नाम अगर पता है आपको तो बता सकते हैं।

ऊंचे लोग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया गीतकार संगीतकार का नाम। एक श्रोता ने लिखा है कि एक सपना था जो फौज में जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। एक था जिंदगी का हम सफर साथ साथ चले सारे जीवन भर, लेकिन वो सपना भी अधूरा रह गया।

बेटा। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज शुरू का सफर ममता दीदी के साथ सुपर फास्ट रहा, 120 की स्पीड पर चलकर उनकी प्रस्तुति बेस्ट रही। भाई अगर हम स्पीड को धीमा करेंगे तो आप सब श्रोताओं की ढेर सारी टिप्पणियां कैसे शामिल होंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक भी गीत शामिल नहीं हुआ, और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे आज तो बहुत सारे गाने शामिल हुए। तो अब देखिए कि बहुत सारे श्रोताओं की पसंद इसमें शामिल थी। और अब सिर्फ इतना बता दें, आज के इस सुरीला सफर का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है गांव और खेत पर। गांव और खेत एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर गांव शरीर है तो खेत उसकी आत्मा है। अगर गांव एक गीत है तो खेत उसकी मधुर धुन है। दोनों का संबंध उतना ही गहरा है जितना धरती और आकाश का, नदी और किनारों का, या बीज और वृक्ष का। गांव की पहचान उसके खेतों से होती है और खेतों की जीवंतता गांव के खेतों से। सुबह की पहली किरण जब खेतों पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सूर्य स्वयं धरती के माथे पर स्वर्णिम तिलक लगा रहे हों और दोनों हाथों से अपना सारा चमचमाता सोना धरती पर लुटा रहे हों। ओस की बूंदें पत्तियों पर मोतियों की तरह चमकती हैं और हल्की हल्की चलती ठंडी हवा फसलों के साथ मिलकर एक मधुर राग छेड़ देती है। दूर तक फैली हरियाली आंखों को ही नहीं मन को भी ठंडक भरा सुकून दे जाती है।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी।

खेत केवल अन्न उगाने की भूमि भर नहीं होते, वो तो किसान के सपनों की पाठशाला भी होते हैं। हर बीज में एक आशा छिपी होती है, हर अंकुर में एक भविष्य और हर फसल में अनगिनत परिश्रम की कहानियां आकार ले रही होती हैं। किसान जब मिट्टी में बीज डालता है, उस समय वो केवल खेती नहीं करता बल्कि विश्वास बोता है कि समय आने पर ये धरती उसकी मेहनत को फल में बदल देगी। गांव की पगडंडियां खेतों तक पहुंचती हैं और खेतों की मेड़ें जीवन के संघर्ष और सफलता की कथा कहती हैं। बैलों की धीमी चाल, हल्की रेखाएं, फसलों की लहराती बालियां और किसानों के माथे पर चमकता पसीना, ये सभी मिलकर परिश्रम का एक ऐसा महाकाव्य रचते हैं जिसे पढ़ने के लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं होती।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते किए। भारत को ऑस्ट्रेलिया से दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप और डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील का दौरा किया। उन्होंने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 4 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे बहाली कार्य की समीक्षा की। यहां भूस्खलन से रेलवे लाइन को भारी नुकसान हुआ था। मध्य और पश्चिमी रेलवे की टीमें मिलकर यहां काम कर रही हैं। एक लाइन बहाल कर दी गई है और अब ट्रेनें 2 इंजनों के साथ चलाई जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण दौरे पर प्रदेश में आए हुए हैं। कल देर रात वे मंदसौर जिले के करोट स्थित रूपरा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं और हाईवे के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या पर ध्यान देने की अपील की। करीब 1,10,000 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का करीब 244 किलोमीटर हिस्सा प्रदेश से होकर गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना की। करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा उन्होंने पैदल पूरी की। रास्ते में श्रद्धालुओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। परिक्रमा 2 घंटे 10 मिनट में पूरी हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री बांदा रवाना हो गए, जहां वे विकास कार्यों का

करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया सहित 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में भी बारिश की संभावना है। इस साल अब तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बारिश हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में इंग्लैंड फिलहाल 2-0 से आगे है। भारत को श्रृंखला में बने रहने के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। तीसरे मैच में भारत को 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच कलेक्टर ने कल जिले के मालखेड़ा और जावी गांवों में जैविक खेती कर रहे किसानों के खेतों का निरीक्षण कर प्राकृतिक खेती की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जल जनित बीमारियों से बचाव के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम थड़ौदा के प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। शिवपुरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कल स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण सुरक्षा का कवच विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया। झाबुआ कलेक्टर ने कल जिले के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, मध्याह्न भोजन और आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा की। भिंड में मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को किया जाएगा। राजगढ़ के सभी पेयजल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए

0: अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है।

0: उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: बहारें फिर भी आएंगे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शकील बदायूनी का लिखा गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी साहब बीबी और गुलाम। आइए अब सुने मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार ओपी नैयर।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: चलना।
1: आर पार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, गीता दत्त की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
5: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
4: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं अभिलाषा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोल लिखे हैं, धुन बनाई है राहुल देवबर्मन ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों सहेलियों और सखा भाइयों को जो कार्यक्रम सखी सहेली सुन रहे उन्हें और सोनाली आपको दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: बिल्कुल भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बदलते मौसम में अपना सब खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और घर का भी ध्यान रख रहे होंगे। और इस बारिश में बहुत सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे।
2: एक हमारे सखी ने लिखा है कि सोशल मीडिया न्यूज समाचार पत्रों से मुंबई की बारिश के हालचाल दिख रहे हैं और इसके बाद भी सही समय पर आप सभी का प्रोग्राम पेश करना अपने कार्य के प्रति निष्ठा बहुत बड़ी बात है। भगवान से दुआ है आप सब अपने सुरक्षित रहें और अपने कार्य करते रहें। ऐसे कोई जब हमारी परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता
1: बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भी तो अपने वादे पे हमें उतरना होता है, सही खराब बनना पड़ता है।
2: और हमारी श्रोता भाई बहन भी इतनी बड़ी ही शिद्दत के साथ में इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखते हैं तो इतना आनंद होता है ना, ऐसा लगता है कि सभी हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और हमसे बतिया रहे हैं इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों,
2: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है और जहां नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहां भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो
1: जी।
2: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई

0: इन मैसेजेस के माध्यम से।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, इस हमारा तभी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम खूब सारी जानकारियां लेकर आए, मनोरंजक गीत लाएं और कुछ खट्टी मीठी बातें भी हों।
0: है ना। और जैसे बारिश का मौसम है, झमाझम बारिश पूरे भारतवर्ष में हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही है तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से वहाँ भी बारिश हो जाए, बस बारिश संतुलन में हो।
1: जी
0: उसके लिए जो है सड़क यातायात और बारिश, यानी ये देखिए ना, इन दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही है सड़क यातायात की, कि कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं बारिश के मौसम में, तो किस तरह से हमें ध्यान रखना है, इस विषय पर उपयोगी टिप्स ये हमारे श्रोता भाई बहन इनने बहुत सारे लिखकर भेजे हैं, हम भी बताएंगे साथ
1: बिल्कुल
0: ही।
1: हाँ। और फिर क्या होता है जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती बहुत बारिश की वजह से, पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई में देखा, आपके शहर में भी ऐसा कुछ हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं और फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से भी आती है, कि अपील होती है कि भाई जो जहाँ है वहीं रहें। और फिर ऐसे में बच्चों की जिद जो घर में रहते हैं तो उनके शुरू हो जाते हैं, आज हम स्कूल नहीं गए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करके दो, हमें वो करके दो। ये सारी तो जो चीज़ें हैं ना, इस तरह के सीन बहुत सारे घरों में हुआ करते होंगे।
0: दिखते हैं ऐसे सीन, और होता यूं है कि अगर हम काम में लगे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, बच्चे ने जिद की कि भाई आज मम्मी हमें पास्ता बना बना दीजिए, तो हम, मैंने जब काम में रहते तो हमने कहा ठीक है भाई, पास्ता बोल रहा है तो बना देंगे, पर तब हम ऐसे ही उनसे वादा कर देते कि हाँ बना देंगे, पर पास्ता बनाने के लिए घर में सामग्री भी चाहिए, फिर
1: बिल्कुल
0: अगर हमने पास्ता नहीं बना दिया तो फिर बच्चे जो है ना सारा घर सर पे ले लेते हैं,
1: हाँ।
0: और उनकी जिद के आगे पेरेंट्स जो होते हैं हतबल हो जाते हैं।
1: हम कई बार उसमें ऐसे उनको एक बात उनकी इधर उधर करने के लिए उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक जाए,
0: बटाने
1: तो
0: के
1: हम
0: लिए।
1: कहते हैं अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं मेरे पास है ना,
0: मेरे
1: मेरा
0: गुल्लक
1: अपना
0: में।
1: गुल्लक उसमें से निकाल लीजिए आप, इस तरह से भी कहते हैं बच्चे।
0: तो यानी
1: और
0: गुल्लक
1: जी
0: हमारे बचपन का मनी बैंक, या यूं कह लीजिए बड़े होने के बाद भी अगर घर में गुल्लक होना तो एक अलग ही प्रसन्नता रहती है, कि जो कुछ भी इधर उधर घर में चिल्लर पैसे कुछ रुपए इधर पड़े हुए हैं तो हम झट से उसमें डाल देते हैं, तो हमें भी एक सुकून लगता है कि चलो हमारे पास इसमें तो बचत है, भले
1: जी
0: ही बड़े बड़े हमारे बचत खाते होंगे और बड़े बड़े हमारे FDs होंगे, पर ये जो छोटा सा गुल्लक होता है ना, ये बड़ा ही मासूमियत भरा होता है।
1: बिल्कुल। और एक सुकून सा देता है कि अगर कभी अचानक से कुछ छुट्टे पैसों की जरूरत पड़ गई तो हमारे पास गुल्लक है ना। और इसी साथ में ये भी है कि हम जब बहुत सारी बातें होती घर में बैठे हैं तो कई सारे बातें निकलती, क्योंकि बरसात के दिन अक्सर बाहर जाना हो नहीं पाता, बातें बहुत सारी निकलती हैं। और कभी हम किसी की जद्दोजहद की बातें करते हैं, किसी की कोई प्रेरणा स्रोत कहानी के बारे में जिक्र निकल जाता है। तो आज के दिन हम कहानी पद्मश्री के खंड में बात करेंगे कुछ इसी तरह मंजमा जोगथी की।
0: जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखे हैं, और हम सारे श्रोताओं को उनके जीवन से जुड़ी कितनी परेशानियां थी और उसके बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। पर अब क्या करना है दीपा?
1: देखो अब मैं क्या कर रही हूं।

0: सोनाली, कहाँ खो गई तुम?
1: मैं खो गई थी हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ने में।
0: देख रही थी मैं कि बहुत सारे संदेश आए हैं और तुम छांट रही हो कि कौन ज्यादा से ज्यादा हम संदेश शामिल कर सके अपने कार्यक्रम में।
1: क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं ना, इतनी मेहनत से कमेंट्स लिखते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि उनके कमेंट्स शामिल करना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे श्रोता
0: जी, ये बात तो 16 आने सच है। और अब ये कि कहानी उनकी, जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें, परेशानियां, हालात, बहुत दिक्कतों भरे देखे, उनके बारे में। ये एक महिला जिन्होंने दर दर भटकने के दिनों को देखने से लेकर राज्य के लोक कलाओं के प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख बनने तक की उनकी ये कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजम्मा जोगथी की, उनके असाधारण जीवन की कहानी जो कि आज स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन गई है।
1: बेल्लारी के पास कल्लू कम्बा गाँव में मंजूनाथ शेट्टी के रूप में जन्मी मंजम्मा ने अपने जीवन में अकल्पनीय पीड़ा झेली है दीपा। ये तब शुरू हुआ जब किशोरावस्था में ही मंजूनाथ ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना शुरू किया। वे कहती है कि जब मैं 15 साल की हुई तब मैंने एक महिला के रूप में अपनी पहचान को पूरी तरह से अपना लिया था और परिवार वाले उनके भीतर हो रहे इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वे तृतीय पंथी थी। अकेलापन और भीषण गरीबी के दिन झेलती रही मंजम्मा। इसी दौरान एक दिन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। दावणगेरे के पास एक बस स्टैंड पर उन्होंने अपने पिता पुत्र की जोड़ी को देखा और जो पिता ने लोकगीत गाए और पुत्र ने अपने सिर पर लोहे का बर्तन रखकर नृत्य किया।

0: उन दोनों को और उस दिन को याद करते हुए मंजम्मा बताती हैं कि यह जोगप्पा समुदाय का एक लोक नृत्य था और मैं हमेशा से ही इस नृत्य से मोहित रहती थी, इसलिए मैं वो पिता जो ये कर रहे थे बस स्टैंड पे ये वाली कला, वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे मुझे ये नाच जो है, ये नृत्य है, इसे सिखाएंगे। खुशी की बात ये है कि वे मान गए। फिर क्या होने लगा कि मंजम्पा हर दिन उनकी कुटिया में जाती और ये नृत्य सीखती। तो जो घड़ा, जो उनके भाषा में, उनकी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में जिसे चोंबू कहते हैं, उसको संतुलन करना, कभी कभी तो किसी देवता की मूर्ति को भी सिर पर रखकर सुंदर नृत्य करना बहुत रोमांचक उन्हें लगता था।
1: और उस समय मंजम्मा को ये नहीं पता था कि ये कला उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव लाएगी। एक साथी जोगप्पा ने उन्हें उस समय के लिए प्रसिद्ध लोक कलाकार कालव्वा से मिलवाया। वे याद करते हुए बताती है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब कालव्वा ने मुझे अपने सामने नृत्य करने के लिए कहा था, जिसे आप ऑडिशन कह सकते हैं। उन्होंने किसी से मेरे चेहरे पर मेकअप करवाया। मुझे याद है कि मैंने आईने में देखकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, ये उनका कहना था, और मैं बहुत सावली थी और इस मेकअप ने मुझे गोरा और सुंदर बना दिया। मैंने कालव्वा के गायन पर नृत्य किया और बस बात खत्म। जल्दी ही वे मुझे नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए बुलाने लगे, फिर बड़ी भूमिकाओं के लिए भी उन्हें बुलाने लगे।
0: जी, और इसके बाद रंगमंच और नृत्य ने उनके जीवन को व्यस्त कर दिया। वे आगे बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे असली रूप को खोज निकाला हो और मुझे मंच पर आज़ाद कर दिया हो। मंजम्मा जो कल्लव्वा जोगथी के नृत्य समूह में स्थायी एक नृत्यकी बन गई थी और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने लगी। कल्लव्वा की मृत्यु के बाद मंजम्मा ने मंडली का कार्यभार संभाला और नृत्य को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया।
1: जोगती नृत्य, जिसे आज इसी नाम से जाना जाता है, अपनी पहचान और लोकप्रियता का श्रेय काफ़ी हद तक उन्हें ही देता है। एक विशिष्ट जोगती नर्तकी लेट कर केवल मुँह से फर्श से सिक्के उठाने और सिर पर घड़ा संतुलित करने जैसे कर्तव्यों में भी माहिर होती है। यानी शरीर इतना फ्लेक्सिबल चाहिए, है
0: बिल्कुल,
1: ना,
0: और संतुलन कितना ज्यादा चाहिए,
1: बहुत जरूरी है। और मंजम्मा को 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनकी जीवन कहानी हावेरी जिले के कर्नाटक लोक विश्वविद्यालय में स्कूली पाठ्यक्रम और कला स्नातक पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है।
0: वो आगे कहती हैं इंटरव्यू में कि मेरे लिए कला ही ईश्वर है, इसने मेरे भूखे पेट को भरा, ये हर दिन मेरी आत्मा को तृप्त करती है और जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब इसने मेरा साथ दिया।
1: और वर्ष 2021 में उन्हें भारत गणराज्य के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले कर्नाटक जनपद अकादमी के सदस्य के रूप में और बाद में राज्य सरकार द्वारा उसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसी तरह वे राज्य में प्रदर्शन कला के शीर्ष संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली तृतीय पंथी महिला बनी है। कितनी बड़ी बात है ना दीपा,
0: बहुत बड़ी बात। और ये वे कहती हैं कि उनकी ये चाहत है कि जोगती नृत्य को एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिले। इसे केवल जोगप्पाओं द्वारा ही प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि बच्चों को भी अन्य नृत्य शैलियों की तरह ये नृत्य शैली सिखाई जानी चाहिए।
1: और एक इंटरव्यू में अपने बीते दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब कर्नाटक जनपद अकादमी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो राज्य में लोक कलाओं को बढ़ावा देने वाला विभाग है, उस दिन उनका फोन लगातार बज रहा था। वो सारा ध्यान, प्यार और सराहना मुझे अभिभूत कर रही थी। मंजम्मा आंसू रोकते हुए कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन इसी स्वीकृति और प्यार के लिए तरसते हुए बिताया। यानी कितना संघर्ष था उनके जीवन में।
0: बिल्कुल, जब परिवार आपको छोड़ देता है, अकेलापन आपका साथी बन जाता है, ऐसे में जब कहीं से भी प्यार दुलार अपनापन मिलता है ना, तो वो इंसान के दिल पर क्या बीतती होगी ये सोचने, मतलब हमारी सोच से भी बाहर है।
1: और ऐसा होता है ना कि आम इंसान जो होते हैं ना, हर बार हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, हमारा तो नसीब ही खराब है। पर देखिए ना, उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों के बाद
0: जी
1: एक पद्मश्री तक पहुंच गई। यानी कितनी बड़े, कितना संघर्ष होगा उनके जीवन में।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। बातें बहुत सारी गंभीर हो गई है, क्यों ना कहीं कुछ एक संगीत,
1: सुमधुर
0: गीत
1: सुनते हैं। गीत

0: सोनाली, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं होगा?
1: सभी को पसंद है भाई, पर बहुत संभाल के वहाँ पे हमें भीगना पड़ता है कि बीमार ना पड़ जाए, है ना?
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो रेनकोट डाल दीजिए उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बरसते पानी में, वो पानी में पैरों से उछालना या उनकी छोटी छोटी साइकिलों को चलाना। तो हर बार मना करने के बदले एक दो बार उन्हें उनकी पूरी बरसाती पहना के, रेनकोट पहना के अच्छे से उनको छोड़ भी देना, चल सकता है ना ऐसा?
1: चल सकता है। वैसे अभी गुल्लक की बात चल रही है हमारी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बचपन का मनी बैग। वाह क्या बात है, उन दिनों मिट्टी के गुल्लक कुंभकारों द्वारा अच्छी तरह पक्के पकाए आते थे और उनके ऊपरी हिस्से में पैसा डालने के लिए एक छेद रहा करता था, लेकिन वो भी खरीद से बाहर की कीमत पर या दीपावली पर दिए लेते समय आते थे, इसलिए डिब्बे में पैसे रखने का शौक था। एक बार मुझे टाइफाइड का बुखार आया, मैं बेड पर सोए हुए पैसों के डिब्बे खनखनाकर संतुष्ट रहता था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन माह भर से बुखार था और बहुत परहेज चल रहा था। रोटी की पापड़ी और परवल का चोखा पथ्य में दिया जाता था। एक बार लोग विजयादशमी का मेला देखने गए थे और मेरे देखरेख करने के अनदेखी कर रखा हुआ दही बड़े को भर

0: पेट खाया। पिताजी की ही चिकित्सा चल रही थी जब वे मेला से लौटे तो मुझे तेज बुखार था और देख रेख करने वाली की अच्छी खिंचाई हुई। ऐसा गुल्लक हुआ करता था, अब तो गुल्लक का नाम एक सीरियल भी आ रहा है।
1: बात
0: बहुत
1: तो सही
0: अच्छी यादें आपने
1: है।
0: साझा की है।
1: तो यादें साझा करें या इसी के बारे में बात करें, एक संदेश और ले लें।
0: हाँ
1: ये संदेश कहता है कि बचपन का ही नहीं, मैं तो अभी भी इस मनी बैंक को अपने पास रखती हूँ। गुल्लक में पैसे रखना मेरी बचपन की आदत है। डेली कुछ पैसे उसमें डालती हूँ और साल भर के बाद उसे तोड़ने में मज़ा आता है। एक उत्सुकता रहती है कि कितने पैसे जमा हुए हैं। हालांकि कुछ साल पहले मेरे घर में चोर घुस आए थे, ओहो, और मेरे दो बड़े बड़े गुल्लक दूसरे सामान के साथ ले गए। लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये थे दोनों गुल्लक मिलाकर। तब मैंने सोचा अब गुल्लक नहीं रखूंगी, पर आदत का क्या किया जाए, अब सिर्फ सिक्के ही रखती हूँ, बड़े बड़े रुपए उसमें नहीं डालती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी बात हो जाती है घर में कि चोर आ जाते हैं और आप देखिए ना, आपका गुल्लक ही वो लेके गए। लेकिन एक बात इसमें ये जान बहुत अच्छी लगी, आपने 8-10 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लिए
0: तो
1: थे गुल्लक
0: इसलिए
1: गुल्लक
0: हमें ये
1: करके।
0: संदेश मिलता है इस मैसेज से कि भाई हमें गुल्लक में सिर्फ छोटे छोटे पैसे ही रखना है, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये इतने ही रखना है। बड़े बड़े नोट रखने के लिए बैंक है तो
1: बैंक
0: बैंक
1: है
0: में
1: या आप
0: रखें।
1: कुछ ऐसी जगह पर घर पे रखिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, कि कभी ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो आपके मेहनत के जमा किए हुए पैसे कोई यूं ही उठाकर ना ले जाए।
0: गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों के को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। बचपन की यादें और गुल्लक का महत्व, बचपन का खजाना, इसमें जमा किए हुए एक एक सिक्के की खनक में खिलौने, आइसक्रीम और साइकिल जैसे छोटे छोटे सपने छुपे होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से ही आय और व्यय यानी पैसा बचाने और खर्च करने के बुनियादी सिद्धांत सिखाने के लिए सबसे बड़ा मददगार है। और तोहफे की परंपरा अक्सर त्योहारों या जन्मदिन पर माता पिता और रिश्तेदारों से गुल्लक तोहफे में मिलता था जो आज भी यादों में ताज़ा है। आधुनिक रूप में आजकल पारंपरिक मिट्टी के गुल्लक के साथ साथ लकड़ी के नक्काशीदार बॉक्स और पासवर्ड या डिजिटल लॉकर वाले प्लास्टिक के स्मार्ट मनी बैग भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है।
1: आजकल तो बहुत अलग अलग डिज़ाइन वाले मिलने लगे हैं गुल्लक। और देखो ना सोनाली, उसमें हर जमा सिक्का केवल धन नहीं होता, वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है। और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 रुपये मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 रुपये मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा,
0: और
1: आधा
0: कुछ खर्च कर
1: खर्च
0: लूंगी।
1: करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज़ मुझे जो पसंद है या ज़रूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
0: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा
1: बिल्कुल
0: लगता है कि
1: सही।
0: आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2 या 5 रुपये, 10 रुपये देते थे। उन बच्चों वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी।
1: जी
0: धीरे धीरे जब
1: हाँ,
0: सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है, सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे। वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा। एक एक रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
0: और

0: दीपा, ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते थे।
0: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था ना।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: सही
0: एक
1: कहा।
0: साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं, बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था। और
1: देखो, हाँ एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम फिर
0: फिर
1: आते
0: हाजिर
1: हैं।
0: होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए, एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ़ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है। ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
0: हमें तो एक गीत सुनना है,
1: तो सुनवाते हैं गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपये लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना
0: बिल्कुल
1: पड़ता है।
0: और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं। कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ, कि मुझे ये कहना है बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचाकर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए, ये जरूरी नहीं। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम

0: कारोबार करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है।
1: सही
0: तो
1: बात है।
0: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज़्यादा ज़िद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
1: कैसे
0: करते
1: कर
0: हैं।
1: रहे हैं। और
0: एक साथी ने लिखा है दीपा, कि बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता दादा दादी नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राज हट, त्रिया हट और बाल हट, तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है ये भी बताना बहुत ज़रूरी है,
0: जरूरी
1: क्योंकि
0: है।
1: जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे, वो उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक एक अलग विषय है जो कि विचारणीय है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी। यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था, और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था। ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्हें उन्होंने कहा है कि भाई हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना
1: क्योंकि
0: उतना
1: आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत
0: स्मार्ट होते।
1: सतर्क और हाँ सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
0: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है। कि
1: हाँ
0: बचपन में माँ
1: जी।
0: ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी, नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनसे इनने नहीं की ना तो उनसे मांग लेते हैं, और
1: हाँ
0: ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था, एक बार माताजी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहना था जब मैं 7 साल का था। तो
1: यानी
0: ये तो
1: सर्दी की जो मोटी कोट
0: हाँ,
1: होते हैं
0: वो भी
1: वो
0: गर्मियों में
1: गर्मी में पहनना इस तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं।
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहाँ पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका। और देखिए, हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल कर लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला जो जो खीर बनाने में वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए। ऐसी भी शरारत बच्चे
0: ऐसी भी शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो ये बात सही है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बारिश की जो बात हम कर रहे थे ना सोनाली, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, लौटते समय बड़ी तेज बारिश आई और सारा ट्रैफिक जल्दी जल्दी उसमें बहुत जल्दी जल्दी सब लोग भागे जा रहे थे, मुझे भी लौटना था, बारिश की वजह से सड़क फिसलने वाली हो रही थी, तो मैंने ओला की मतलब

0: उन्होंने एक कैब बुक कर लिया था और जल्दी से बैठकर वापस आई। बार बार ऑटो वाले से धीमे चलने को कह रही थी कि कहीं फिसलने में कहीं गाड़ी स्किड कर जाती तो वो ना हो।
1: तो अपना अपना ध्यान रखना है। एक हमारे सखी ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जाँच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमे भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
0: जी,
1: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग मोबाइल देखते हुए चलते हैं तो
0: अभी भी ये, जबकि इतनी बातें और इतनी घटनाएं हम देख लेते हैं, फिर भी इस बारे में हम थोड़े से हल्के में ले लेते हैं,
1: केयरलेस हो जाते
0: केयरलेस हो जाते हैं।
1: तो लापरवाही ना बरते। जब भी रास्ते से पैदल चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें सड़क का ध्यान रखना है कि कहाँ पर गड्ढा है, तो ऐसा ना हो कि हम उस गड्ढे में गिर जाएं।
0: बिल्कुल। और अभी क्या कर सकते हैं?
1: गाना सुनते हैं।

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना
1: जी। बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात

0: लिखते रहे और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
1: और एक संदेश कहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहाँ पता होता है कि रास्ते पर कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहाँ पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
0: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
1: चलिए

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए
1: दीदी? मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया
1: दीदी? अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी, हम बहुत सुनते थे। पहले क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, सुनते हैं खुददार फिल्म का ये।

0: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो परमाई शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
1: जी जी बहुत बढ़िया, तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
0: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है वीर भारती में।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्यप्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है
0: जी।
1: और ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो है। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71,
0: अच्छा,
1: तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी हाँ। रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे हाँ। और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष,
0: अच्छा,
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो
0: पारी, हाँ।
1: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं
0: हाँ,
1: कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कम्पोजिट टूर प्रोग्राम

0: कम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते
1: बताएं,
0: हैं और बड़ा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आनंद
1: घूम
0: आता
1: के आए और एंजॉय करें। तो सत्य प्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।
2: है। जिम जिम।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी, तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई? तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से

0: पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है और
0: जी
1: वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में, हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है
1: जी मैं उदयपुर
0: पर्यटन?
1: के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह
0: जी
1: और
0: जी
1: राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी
0: बिल्कुल,
1: उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे
1: जी
0: रहे हैं
1: जी
0: हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी और
1: जी
0: बड़ा
1: जी
0: अच्छा लग रहा है, इतनी सारी बातें आपने
1: एक
0: बताई।
1: चीज मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा,
0: जी हाँ
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो कुछ फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के
1: और
0: गाने।
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की,
1: हूँ।
0: तो बस विविध भारती से भी सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ
1: जी
0: बातचीत को दे रहे
1: जी
0: हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगाने बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा,
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है। क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें
0: जी जी
1: दीदी मैं।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं

0: तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है, और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी।
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह हैगा ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हो रही है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो, प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
0: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का, और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
0: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: प्यार भरा नमस्कार
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो हेलो फरमाइश सुनने वाले हो प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है मुंबई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोले तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश.
1: नमस्कार मैम.
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ.
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना. तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं. त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को.
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है. कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना.
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है.
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल. और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए.
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड.
0: मतलब खूबसूरती का आलम है. तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए.
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ. ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए. ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा.
0: जी.
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी.
0: जी बिल्कुल,
1: देखने के लिए.
0: बिल्कुल.
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर. देवी का शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या.
0: तो ये शक्तिपीठ है.
1: बिल्कुल.
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज

0: वीर कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम
1: जी
0: आपको
1: जी
0: पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी,
1: और तो, उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो
1: जी जी,
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पैरिस से, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी
0: जी, गीतकार,
1: संगीत तैयार किया है
0: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है आपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं अभी उतना नहीं है, जब

0: असल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
1: जी, बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
0: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उस सामग्री जलाई जाती है।
1: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
0: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
1: अरे वाह, क्या बात।
0: सारनाथ में जैसा आप जान ही रहे हैं कि अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में,
1: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: अरे वाह, क्या बात।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
1: तो गा के सुनाई गनवा।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
0: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घेरा बदला, ए आर रहमान जी, जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल
1: बेहतरीन गाना था बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी जी बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है, याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका गेरा रे
0: बरेली के बाजार में। और बरेली की और कोई खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम करते हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं?
1: मैम जी हम सूट भी बना लेते हैं, साड़ियाँ भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियाँ भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर?
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर।

0: टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 4002462, मुंबई का एसटीटी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 4002462, मुंबई का एसटीटी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छायकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।